आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

पुरख निरुपाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। इस नूं मूल मंत्र कहा जाता है। श्री गुरु नानक देव जी ने उस अनंत परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन इस मूल मंत्र विच दे दिता है। इस दे अखरी अर्थां नूं समझिए। एक परमेश्वर एक है, दो जां तीन नहीं। ओंकार रजो तमो सतो गुण तो परे परमेश्वर सर्वव्यापक है। सत नाम उसका नाम सच है। कर्ता पुरख इस सगल जगत का कर्ता परता वो प्रभु आप ही है। निरपाओ परमेश्वर आप ही जदों लीला रच रहा है आप ही ओ जीव जगत हो गया। जद उस तो अलावा होर कोई है ही नहीं तो फिर उसनु डर किसता। निर्वैर आप तो आपनु वैर भी संभव नहीं सो प्रभु निर्वैर है। अकाल मूरत परमेश्वर काल समय तो बाहर है। काल विच जन्मी हर मूरत मरणशील है। परमात्मा दा रूप अकाल है समय तो बाहर है। अजोनी प्रभु किसी भी जोनी विच कदी भी नहीं आवेगा। जिसका जन्म कदी ना होवेगा ऐसे परमेश्वर में अजोनी क्या जाता है। सैभं परमेश्वर स्वयं प्रकाश है। गुर परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है चेतन स्वरूप है। प्रसाद प्रसाद तो भाव है आनंद रूप। जिसने भी ज्ञान रूपी गुरु दे जरिए उस परमेश्वर नु जानिया वो आनंदित हो जाएगा। मूल मंत्र विच साधक वास्ते साधना दा राह भी है सुझाव भी है और अंतम रूहानियत दी मंजिल विच जाके जो अनुभूति होवेगी वो भी इसी मंत्र विच है। इसी कारण इसनु मूल मंत्र कहा जाता है। भावना एकाग्रता अते श्रद्धा नाल इस मूल मंत्र दा कीता गया जप साधक दे जीवन च शक्ति ते भक्ति नू लेके आवेगा।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए। अल्लाह

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

या शाफ़े महशर, कभी आप मेरी तरफ मुतवज्जे हों, मुझ मिस्कीन और नादार की तरफ नजरे इल्तिमास फरमाएं। मेरे मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी नालैन पाक के नक्श पर अपनी जान फिदा कर दूं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि।

मिंबर पर मौजूद है और रोज़े हश्र मेरे गुनाहों की गवाही देगी। ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्मिंदा हूँ। ऐ मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्मिंदा हूँ। और ऐ सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

और सरशार है, और इस जंजीर में जो मोहब्बत की जंजीर है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दिल बंधे हुए हैं और हम आपकी बारगाह में नम आंखों से सुखनंदाज हो रहे हैं या रसूल अल्लाह।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.

खुदा ने पाला, कोई उसे क्या मारे जिसका रब है रखवाला। वो अपने मददगारों का मुहाफिज है, अल्लाह।

0: जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉन्गलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

0: जुतियां भी कसी गयी पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
4: Okay, check it out. Big up.

0: जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.

0: ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कब्र को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Have you tried Caroteno Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caroteno Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caroteno Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caroteno Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
3: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद उत्सव विद आनंद मूर्ति गुरुमा इन बर्मिंगम। Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 078-341-77866, Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम एंड वेलकम बैक आफ्टर दिस येट अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग. सनराइज रेडियो 103.2 एफएम इज व्हाट यू हैव ट्यून्ड इन. माय नेम इज एबी एंड दिस इज द ब्रेकफास्ट शो. टू कीप द म्यूजिक रोलिंग वेयरएवर यू गो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप व्हिच यू विल फाइंड ऑन द ऐप स्टोर और गूगल प्ले. एट द सेम टाइम आवर वेबसाइट www.sunriseradio.fm. If you log on to it, you can find out all the updates of Sunrise Radio. At the same time, you can stream the radio on the website as well. It's www.sunriseradio.fm. And on that note, right now, the next song is specially dedicated to you.

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 एफएम पर और 100.6 एफएम पर आप पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुन सकते हैं। अगर आप डीएबी पे सुनना चाहें तो ब्रेडफोर्ड, कीथले, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स एंड वेस्ट लंदन में सुन सकते हैं। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पे सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं। और अगर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं और सनराइज रेडियो को सुनना चाह रहे हैं तो आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस रहेगा www.sunriseradio.radio। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एबी का जिन्होंने पिछले दो घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। एबी बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों द सनराइज रेडियो लिसनर्स चॉइस अवार्ड्स 2026 आर कमिंग सून। सेलिब्रेटिंग द बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, वेन्यूज एंड आर्टिस्ट यू लव। Voting will be exclusive to listeners club members. So join free now at sunrise.radio and keep listening for more details. तो दोस्तों प्रणाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अब से लेकर ठीक एक बजे तक आपकी डेडिकेशन होगी और एक और दो के दरमियान लाइव कॉल्स का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो दोस्तों चलते हैं प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम।
1: To the hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6, and even 8-bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सोनाल का याग्निक और मुगल अग्रवाल की प्यारी सी आवाजों में, इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि इस वक्त टाइम हुआ है 11:14, यानी कि 11:14, तो कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत होगा हमारी प्यारी बहना सादिया जी। आपने सुबह सुबह आज फरमाइश कर दी, बहुत अच्छा लगा, बहन ने फ़ोन किया, बात की और गीत की फरमाइश की प्रोग्राम के शुरू में ही। तो आपकी पसंद का गीत जो है वो कमर्शियल के बाद आपके लिए पेश करेंगे, तो आप सुनना चाहती हैं आजरा जी के लिए और अपनी दीगर तमाम वहाँ साथी जो काम कर रही हैं उनके लिए, तो आप के नाम करेंगे आपकी पसंद का गीत लता जी और मुकेश की आवाज़ों में। तो कमर्शियल के बाद आपकी पसंद का गीत। शुक्रिया एक बार फिर प्यारी बहन फ़ोन करने का। तो जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। ये गीत आपके नाम भी होगा, आपकी जानिब से आपके दोस्तों के नाम भी होगा। और उसके बाद खान साहब, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी करेंगे और दीगर जो साथी हैं वहाँ आपके साथ उनके नाम भी करेंगे। और ग़ुलाम भाई, आपकी जानिब से आपके पूरे स्टाफ के नाम करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने सनराइज रेडियो के संग।
2: 24 hours a day. Sunrise Radio.
3: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.
4: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना मुकेश और लता जी की आवाजों में। प्यारी बहना सादिया जी, आपने इसकी फरमाइश की थी और आप के साथ साथ रीमा जी थी, तो उनके नाम किया और आपकी पसंद का ख्याल रखा हमने, क्योंकि आप काम पे हैं और कभी आप बिज़ी हो जाते हैं और कभी आप इजी हो जाते हैं। इजी होते हैं तो फिर गीत सुन लेते हैं, बिज़ी होते हैं तो नहीं सुन पाते हैं, तो इसलिए जनाब ये गीत हमने आपकी पसंद का जल्दी पेश कर दिया। आजरा जी भी आपके साथ ही, उनके नाम भी आपने करवाना चाहा। तो अब जनाब हीरा खान साहब, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप अपने दोस्तों के लिए गीत सुनना चाहते हैं जिनमें जनाब तारिक ज़ुल्फ़ी साहब और मलक अशफाक साहब, तो उनके लिए भी और दीगर दोस्तों के लिए भी आप गीत सुनना चाहते हैं, तो आने वाला गीत आपकी जानिब से आपके दोस्तों के नाम करते हैं और इसी गीत को जनाब सब सुनने वालों के नाम भी करेंगे जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। स्पेशली मलिक इम्तियाज साहब, इकमाज, मनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह देता, उमेर, बाबर, इफराज आपके नाम भी करते हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं दो प्यार भरी आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की।

जी दोस्तों साथियों, अभी आपने बहुत ही प्यारी सी मालूमात सुनी और इसके साथ अब जनाब वक्त जो बता रहा है गीत का होगा और गीत किसके नाम होगा, चौधरी मुजफ्फर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अच्छा लगा सुन के कि आज आप पूरा प्रोग्राम सुनेंगे क्योंकि आप काम पे हैं। तो जनाब आपके नाम करेंगे, आपकी जन्म से आपके दोस्तों के नाम करेंगे और तारिक जुल्फी साहब अब कन्फ्यूज्ड हूँ, मलिक इश्तियाक हैं या अशफाक हैं। तो एनीवे अगर इश्तियाक हैं तो उनके नाम, अगर अशफाक हैं तो उनके नाम। तो जनाब उसके बाद इसी गीत को नदीम मंसूर साहब, हीरा खान साहब, खान भाई और ग़ुलाम भाई आप के नाम, और इस वक्त सीढ़ियाँ काम कर रही हैं जनाब, काफ़ी इकरा सुनना चाहती हैं नजमा के लिए, इफ़त, नाजिया, उमीदा, रुबीना, बुशरा, ताज़ीम, जायदा और साहिमा के लिए, तो उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज़ रेडियो के संग।

0: हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की। और दोस्तों कविता कृष्णमूर्ति और जनाब अभिजीत की प्यारी सी आवाज की आवाजों में आपने प्यारा सा आखिर सुना। और इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 1:44 है, यानी कि 11:44। तो जनाब वाजिद भाई एड्रेस फिर से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। अब सदाबहार पुराने गीत की बारी आती है और हमें इस गीत की मसूद राणा की प्यारी सी आवाज़ में, ये गीत है, इस गीत की फरमाइश की हमें जनाब हमारे सबके दिल अजीज जनाब नदीम मंसूर साहब। तो उनकी फरमाइश पे आप कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराना गीत सुनेंगे और उसके साथ साथ चौधरी मुजफ्फर साहब, तारिक जुल्फी साहब, हीरा साहब और जनाब खान भाई और गुलाम भाई, सफीउल्लाह भाई और मलिक इम्तियाज साहब, आपकी पूरी टीम, सभी दोस्तों के नाम ये गीत होगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराना गीत, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। सुनते रहिएगा।

0: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official Media Partner Sunrise Radio.
3: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
4: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
3: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
4: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
3: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274 7332। जिनार रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

जी दोस्तों, अभी आपने मसूद राणा की प्यारी सी आवाज में प्यारा सा गीत सुना। नदीम मंसूर साहब ने फरमाइश की इस गीत की। नदीम मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ही प्यारे गीत की फरमाइश करने का, और शुक्रिया प्रोग्राम में शमूलियत का भी, काम पे भी हैं और साथ में सनराइज रेडियो का भी साथ निभा रहे हैं। तो जनाब, एक बार फिर आपका शुक्रिया। और अब क्या है कि अब जो गीत होगा इस आवर का,

गुनगुना सकेंगे। तो अगर आप गीत गाने का शौक़ रखते हों या शायरी का शौक़ रखते हों तो आप ज़रूर आइएगा, अपनी प्यारी जो पसंद की शायरी है वो शेयर कीजिएगा और अपनी प्यारी आवाज़ को दुनिया के कोने कोने तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और जनाब हम आपका इंतज़ार करेंगे एक और दो के दरमियान। तो चलते हैं दोस्तों, आप बस सुनते हैं इस गीत को। ये गीत मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं दो प्यार भरी आवाज़ें।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आ गए हैं और ये ही हिस्सा है जिसमें आप डेडिकेशन दे सकते हैं, क्योंकि जब प्रोग्राम के आखिरी आवर में आएंगे 1 बजे तो लाइव कॉल का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो इसलिए अगर आपने डेडिकेशन देनी है तो जनाब इसी आवर में दीजिएगा। तो चलते हैं प्रोग्राम के जनाब दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत जो है, सभी दोस्तों के नाम करूंगा जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं।
1: हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय स्पीडी कार्गो फॉर वर्ल्ड वाइड कार्गो सर्विसेज। विजिट स्पीडी कार्गो 107 लेक रम्स लेन ब्रैडफोर्ड 7 और कॉल 07739533816। दैट्स 07739533816।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:13, यानी कि 12:13, तो कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत होगा। महबूब अलाई साहब, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। माजे चाहते हैं आपसे बात नहीं हो पाई, अगर अभी आप फ़ोन करेंगे कमर्शियल के दौरान तो मैं आपकी कॉल ले पाऊँगा। तो जनाब शुक्रिया फ़ोन करने का। कमर्शियल के बाद जो गीत होगा महबूब अलाई साहब आपके नाम होगा, और दीगर जो दोस्त इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं सबके नाम होगा। तो चलते हैं दोस्तों इस कमर्शियल को सुनते हैं, उसके बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
2: Experience something truly spectacular as the internationally renowned flower carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
3: अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तेहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं, और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें।
4: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.

तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, क्या गीता साधना सरगम और कुमार सानू की प्यारी सी आवाजों में। फैंसी अ बिट ऑफ ऑन विजिट सनराइज प्ले एंड हेल्प राज रेस बैक टू द स्टूडियो इन सनराइज स्टूडियो रोश। टेस्ट योर फिल्म नॉलेज विद आवर बॉलीवुड क्विज और डिस्कवर विच बॉलीवुड कैरेक्टर्स यू आर। और प्ले नाउ एट सनराइज डॉट रेडियो एंड जॉइन द फ्री सनराइज लिसनर क्लब टू अनलॉक इवन मोर। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले गीत की जानिब। प्यारा सा गीत है आप प्यारे दोस्तों के लिए, तो चलते हैं सुनते हैं इस गीत को, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।

अभी आपने गुरदास मान और साथियों की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब एक प्यारे से गीत की बारी आती है और ये गीत जनाब इस वक्त बाबर शाह पे दो शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली सिकंदर अली उनके नाम और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम, गुलाम भाई आपकी जानिब से स्टाफ आपके स्टाफ के नाम, प्यारी बेना सादिया जी आजरा जी आपके नाम और दीगर तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, अमरीन साहब आपके नाम भी करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और इंजॉय करते हैं।

0: जी दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक और उदित नारायण की प्यारी सी आवाजों में प्यारा सा गीत सुना, और इस गीत में सपने की बात आई तो फिर मुझे एक और गीत याद आ गया, वो भी कुछ सपने के बारे में ही है। तो कभी प्ले नहीं किया तो जहन में आ गया ये गीत, तो मैंने सोचा आज लगे हाथों इस गीत को प्ले कर ही देता हूँ, क्योंकि ऊपर से थोड़ा खुश भी था। गुलाम भाई का फ़ोन आ गया, उनसे गप हुई, बहुत अच्छा लगा। जब गुलाम भाई फ़ोन करते हैं तो फिर वो हमेशा हंसते मुस्कुराते बात करते हैं, तो फिर मूड बंदे का ठीक हो जाता है, तो थोड़ा मूड बेहतर हो गया। तो हमने सोचा चलिए अब इस गाने को पिक कर लेते हैं और ये प्ले करते हैं। पहले चलते हैं जनाब, टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:44, यानी कि 44 minutes past 12। तो जनाब चलते हैं अब कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे एक प्यारा सा गीत आशा भोसले और जनाब रफ़ी मरहूम की आवाज़ों में, प्यारा सा गीत होगा। गुलाम भाई आपके नाम होगा, आपकी जन्म से आपके स्टाफ के नाम होगा तारिक जुल्फी साहब। माजरी चाहते हैं, मैं नाम गलत लेता रहा हूँ हमेशा, तो आज आपने उसको दुरुस्त करवाया कि यार नाम ये नहीं ये है। तो बिल्कुल जनाब आप जो हैं, उन्होंने कहा कि हीरा खान साहब के लिए और मलक इसहाक साहब के लिए गीत सुनना चाहते हैं आप, तो जनाब उनके नाम करेंगे। और तनवीर अख्तर साहब आपने भी फ़ोन कर रखा है, शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी करेंगे। और महबूब अल्लाही साहब आपके नाम भी, चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम भी, अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग हॉल वाले आपके नाम भी, और जनाब नदीम मंसूर साहब आपके नाम भी, और जनाब खान भाई आपके नाम भी करेंगे, सफ़ीउल्ला भाई आपके नाम भी करेंगे, और तीन दो शहजादे हैं, तीसरा तो पाकिस्तान से इस हफ्ते आने वाला है वापस, तो बशारत अली सिकंदर अली आपके नाम भी करेंगे, और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे, और प्यारी बहना अजरा जी, सादिया जी आप के नाम भी, प्यारी बहना सादिया आपके नाम भी, और हाजरा जी आपके नाम भी, और इसी गीत को कंवल साहबा आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शल, कमर्शल के बाद प्यारा सा गीत होगा आप सभी सुनने वालों की नज़र, तो इंजॉय कीजिएगा गीत को।
1: 24 hours a day. Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
3: Official media partner, Sunrise Radio.
4: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chooza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274 733 732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste, and something new.
5: My favorite radio station, Sunrise Radio.
6: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move via the Sunrise smartphone app.
7: We love Sunrise Radio.
8: The greatest station, radio station in the world.
9: Sunrise Radio.
10: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी मरहूम की प्यारी सी आवाज़ों में। तो अब क्या

चलते हैं जनाब, अब आप दोस्तों के लिए ये प्यारा सा गीत पेश करते हैं, और ये कई दोस्तों का फेवरेट गीत है जिनमें मलिक इम्तियाज़ साहब है, उनकी टीम है, इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह देता, उमेर, बाबर, इफराज, और जो बाबर शाह पे दो शहजादे काम कर रहे हैं उनका भी फेवरेट गीत है जनाब, शहादत अली, सिकंदर अली और दीगर जो दोस्त बैठे हैं उनके नाम भी, और गुलाम भाई आप की जन्म से आपके स्टाफ के नाम, और महबूब लाई साहब और दीगर जितने दोस्त, चौधरी फरियाद अपने फरियाद साहब और चौधरी मुजफ्फर साहब स्पेशली, वो भी आज काम पे सुन रहे हैं, उनके नाम भी करेंगे।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सुनना रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे। और दोस्तों, ये प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा है ये सिर्फ और सिर्फ लाइव कॉल्स का है, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब नदीम मंसूर साहब। तो चलते हैं, पहले हिट ऑफ द आवर सुनते हैं, उसके बाद उनसे मिलते हैं।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:10, यानी कि 10 minutes past 1। तो चलते हैं जनाब। अब जैसा कि मैंने कहा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं नदीम मंसूर साहब और साथ में जुड़ गए महबूब इलाही साहब भी। तो चलते हैं तालियों की गूंज में नदीम मंसूर साहब से मिलते हैं। जनाब नदीम मंसूर साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: हुजूर कैसे हैं आप?
2: मैं जबरदस्त, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे हैं?
0: अल्लाह हमेशा जबरदस्त रखे, ठीक ठाक रखे।
2: आमीन,
0: सर जी
2: आमीन।
0: तो आप काम पे हैं, ब्रेक पे हैं, तो इसलिए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप से सुनेंगे कुछ, ताकि आप भी आराम से बाकी जो टाइम बचेगा उसमें आप अपना ब्रेक कर लें, डिनर कर लें ना।
2: जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह
0: जी।
2: चले, पंजाबी का वो माये टप्पे हैं वो आपकी नजर।
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह जी वाह।

जवानी आज कल्ला छोड़ के ना जा, चन्ना जानी आज कल्ला छोड़ के ना जा, निकाजया दिल माड़ा तोड़ के ना जा। होए चन्ना जानी आज कल्ला छोड़ के ना जा, निकाजया दिल माड़ा तोड़ के ना जा।

दिती निशानी मारी मोड़ के ना जा, होए दिती निशानी मारी मोड़ के ना जा, निकाजया दिल मारा तोड़ के ना जा, हो चन्ना जानी आज कल्ला छोड़ के ना जा, निकाजया दिल मारा तोड़ के ना जा, तेरे नाल कंडे ओते जिंदगी गुजार।

मैं तेरे उत्तों वारसा, ओए तेरे उत्तों वारसा, दित्ती ए निशानी माड़ी मोड़ के न जा, दित्ती ए निशानी माड़ी मोड़ के न जा, निका जया दिल माड़ा तोड़ के ना जा, चन्ना जानी आज कल्ला छोड़ के ना जा, निका जया दिल माड़ा तोड़ के ना जा, आई वे बहार लावा मालिया ते चंग वे, ओए मालिया ते चंग वे, वादे तेरे नाल चन्ना रैसा संग संग वे, ओए रैसा संग संग वे, प्यार वाली तांग चन्ना छोड़ के ना जा, प्यार वाली तांग चन्ना वे छोड़ के ना जा, निका जया दिल माड़ा तोड़ के ना जा, होए चन्ना जानी आज कल्ला छोड़ के ना जा, निका जया दिल माड़ा तोड़ के ना जा, सड़े होए दिलों उते दस के मल्ला मैं, ओए दस के मल्ला मैं, सड़े होए दिलों

0: या दिल माड़ा तोड़ के ना जा, चन्ना जानी आज कल्ला छोड़ के ना जा, निका जया दिल माड़ा तोड़ के ना जा।
1: जी वाह, क्या बात है नदीम मंसूर साहब, हाय हाय सदके जाऊं, क्या माया था और बड़ा लुत्फ आया, बड़ा मज़ा आया, ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती नहीं। और आज एक तो आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है, कुछ भी आप गाएं तो वो अच्छा ही लगता है सुनने में। तो एनीवे बहुत प्यारा माया था, आपने टाइम निकाला, हमारे प्रोग्राम में आए और सबके लिए ये माया पेश किया। यकीनन मेरी तरह सभी खुश होंगे और दिल से आपके लिए दुआ निकलती होगी। और शुक्रिया आपका जनाब जो आप आए प्रोग्राम में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़। ये थे जनाब नदीम मंसूर साहब, क्या बात है जनाब, क्या बात है नदीम मंसूर साहब की। और दोस्तों आप हमारे साथ महबूब अलाई जुड़े हुए हैं और साथ में अब्दुल कयूम साहब राइजिंग हॉल वाले भी जुड़ गए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, यूं गए और यूं वापस आए।
2: नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
1: Sunrise Radio, Sunrise. जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों जैसे कि कमर्शियल पे जाने से पहले कहा कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब महबूब अलाई साहब और साथ में अब्दुल कयूम साहब राइजिंग ऑल वाले। तो तालियों की गूंज में खुश आमदीद, वेलकम जी एनू सत बिस्मिल्लाह कहेंगे जनाब महबूब अलाई साहब को। महबूब अलाई साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
4: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: जी सजनो, मखना मलाई दे पेड़ियो की लेकर आए हो?
4: जी शायरी हम लेके आए अभी।
1: अच्छा, मैं सोच रहा था शायद कोई गीत होगा आज।
4: गीत कभी कर लेंगे बाद में।
1: ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात।
4: गाड़ी जो है ना अचानक रुकते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है।
1: सही है, सही
4: कॉल मिल गई तो रोक लिया गाड़ी हमने।
1: ठीक किया आपने जनाब, ठीक किया, बहुत अच्छा किया।
4: तो नजर करना चाहेंगे अभी भाई मंसूर आए, क्या बातें हैं उनकी जी जनाब,
1: क्या
4: जबरदस्त
1: जबरदस्त जबरदस्त।
4: तो ये नाम करना चाहेंगे चौधरी मुजफ्फर साहब है, तारिक जुल्फी साहब है, महमूद सुल्तान कराची वाले, चौधरी फरियाद, चौधरी रुखसार और आसर रियासत हैं, जवेद मीर साहब हैं, भाई सफीउल्लाह हैं और अभी भाई अयूब आए और भाई मंसूर क्या नाम है
1: नदीम मंसूर
4: सभी के नाम और आपके
1: जी,
4: नाम
1: जी जी।
4: शायर लिखता है
1: जी जी,
4: किस्मत का लिखा हम मिटा नहीं सकते।
1: वाह सच्ची बात है,
4: किस्मत का लिखा हम मिटा नहीं सकते, अनहोनी को होनी बना नहीं सकते।
1: वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात।
4: किस्मत का लिखा हम मिटा नहीं सकते, अनहोनी को होनी बना नहीं सकते, जमाने में हसबे आरजू हम किसी को चाह तो सकते हैं मगर पा नहीं सकते।
1: वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब।
4: जमाने में हसबे आरजू हम किसी को चाह तो सकते हैं मगर पा नहीं सकते।
1: वाह,
4: जो रखते हैं दिल के दरीचों को बंद।
1: वाह वाह वाह क्या बात है,
4: जो रखते हैं दिल के दरीचों को बंद, वो खुद किसी दिल में समा नहीं सकते।
1: वाह वाह क्या कहने, क्या कहने,
4: वो खुद किसी दिल में समा नहीं सकते, जितना भी उसको तराश लो मगर, जितना भी उसको तराश लो मगर, पत्थर को हीरा बना नहीं सकते।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
4: जितना भी उसको तराश लो मगर, पत्थर को हीरा बना नहीं सकते, ये एक हकीकत है कि इश्क और सुकून, ये एक हकीकत है कि इश्क और सुकून कभी दिल में एक साथ समा नहीं सकते।
1: बहुत खूब बहुत खूब,
4: थैंक यू। ये एक हकीकत है कि इश्क और सुकून कभी दिल में एक साथ समा नहीं सकते, किस्मत का लिखा हम मिटा नहीं सकते।
1: बिल्कुल सही बात,
4: किस्मत का लिखा हम मिटा नहीं सकते, अनहोनी को होनी बना नहीं सकते।
1: वाह वाह वाह क्या बात,
4: जमाने में हसबे आरजू हम किसी को, जमाने में हसबे आरजू हम किसी को चाह तो सकते हैं मगर पा नहीं सकते।
1: वाह वाह वाह,
4: चाह तो सकते हैं मगर पा नहीं सकते।
1: वाह वाह क्या बात है, क्या बात,
4: आज के लिए इतने का।
1: बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और मुझे ये किस्मत की लिखी रूं की बात आई तो मुझे भी एक शेर आ गया है याद, आपकी नजर करूंगा।
4: अच्छा।
1: बदलती नहीं किस्मत लकीरों को मिटाने से, यादें नहीं मिटती किसी को भूल जाने से,
4: भूल जाने से बेशक
1: क्या फायदा किसी की खातिर दुनिया से रूठ जाएं, या किसी को फर्क नहीं पड़ता किसी के टूटने का।
4: वाह,
1: जीना है तो हंस के जीना सीख लो ऐ दोस्त, या मिलती नहीं रोशनी अपना दिल जलाने से।
4: वाह वाह,
1: बदलती नहीं किस्मत लकीरों को मिटाने से। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे महबूब इलाही साहब, क्या बात है जनाब, क्या बात है, क्या शायरी की इन्होंने, माशाल्लाह आवाज तो है ही प्यारी और ऊपर से शायरी भी बहुत प्यारी की। तो अब जनाब तालियों की गूंज में चलेंगे, अब्दुल कय्यूम साहब राइजिंग हॉल वाले इस लाइन पे मौजूद हैं, ढेर सारी तालियां उनके लिए। अब्दुल कय्यूम साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
5: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्त का, मेरे भाई का क्या हाल है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, भाइयों की, आपके दोस्तों की दुआओं से अल्लाह का बहुत करम है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं और आपकी जो दूसरी आंख है उसका क्या हाल है?
5: वो दूसरी आंख भी चल रही है, बस ठीक है।
1: ठीक चल रही है या कोई 19-20 का फर्क है?
5: कभी आपको एक आंख से देखता था, आप दोनों आंख,
1: वही मैं कह रहा हूँ ना, अब आंख बंद करके देखते होते थे एक आंख से।
5: महबूब अलाई साहब का भाई का कलाम सुना, बहुत ही
1: अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा।
5: और इस वक्त जो सनराइज रेडियो के साथ कान लगाए बैठे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम।
5: एक छोटी सी गजल है, पता नहीं इसको कितनी बार पढ़ चुका हूँ, फिर इसका नंबर आ गया।
1: देखो कोई
5: ने कहा खरीदार होंगे,
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, ऐसी चीज।
5: खरीदार हो गए, बिकने को सारे लोग ही तैयार हो गए।
1: वाह क्या बात है,
5: शुक्रिया जनाब। उसने कहा कि हम भी खरीदार हो गए, बिकने को सारे लोग ही तैयार हो गए।
1: वाह।
5: और उसने कहा कि एक वफादार चाहिए।
1: हाँ।
5: उसने कहा कि एक वफादार चाहिए, सारे जहां के लोग वफादार हो गए।
1: वाह क्या बात है।
5: उसने कहा कि एक वफादार चाहिए, सारे जहां के लोग वफादार हो गए। और उसने कहा कि कोई गुनहगार है यहाँ? उसने कहा कि कोई गुनहगार है यहाँ, जो पार साथ है वो भी गुनहगार हो गए।
1: ओए होए क्या बात है, क्या बात।
5: उसने कहा कि कोई गुनहगार है यहाँ, जो सार जो पार साथ है वो भी गुनहगार हो गए। और गला शेर है, उसने कहा कि कोई आजज़ और मस्कीन है कोई।
1: वाह।
5: उसने कहा कि आजज और मस्कीन है कोई।
1: हाँ।
5: जो लोग गर्द कूचा, सब लोग गर्द कूचा वो बाजार हो गए।
1: वाह वाह।
5: और उसने कहा कि एक वफादार चाहिए, सारे जहां के लोग वफादार हो गए। और उसने कहा कि आजज और मस्कीन है कोई।
1: हाँ।
5: सब लोग गर्द कूचा वो बाजार हो गए।
1: वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
5: जंगजू मिले।
1: हाँ।
5: उसने कहा कि काश कोई जंगजू मिले, आपस में यार बरसरे पेकार हो गए। उसने कहा कि काश कोई जंगजू मिले, आपस में यार बरसरे पेकार हो गए। आखिरी शेर है, उसने कहा अदीम मेरा हाथ थामना। उसने कहा अदीम मेरा हाथ थामना, चारों तरफ से हाथ नमूदार हो गए।
1: वाह वाह क्या बात।
5: और मुझे उम्मीद है कि आपने मुझे बर्दाश्त कर लिया।
1: कमाल करते हैं आप जनाब, बहुत ही प्यारी शायरी, आपका अंदाज बहुत प्यारा है, बड़ा मासूम सा अंदाज है आपका, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप शायरी करते हैं। चलिए भाई है ना, फिर भाइयों का एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत तो होता ही है ना।
6: शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया आपका सर, आप आए प्रोग्राम को रौनक बख्शी, शुक्रिया आपका होना चाहिए जो आप कीमती टाइम निकालते हैं हमारे प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, हमारे प्रोग्रामों को उसको दिलचस्प बनाते हैं। आप दोस्त हैं तो आप दोस्तों का शुक्रिया, मेरा क्या शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। मैं तो पैसे लेने के लिए बैठा हुआ हूँ जनाब,
6: हम भी नहीं आते
1: भाई, पैसे लेने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो शुक्रिया आप दोस्तों का, बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे जनाब बहुत ही प्यारे अब्दुल क़य्यूम साहब राइजिंग हॉल से, माशाल्लाह अब इनकी एक आँख का ऑपरेशन हुआ था तो अब अल्लाह ख्याल करे बेहतर हो गया है, ठीक हो गई है माशाल्लाह, और अब जो बहुत प्यारी शायरी की इन्होंने, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो ढेर सारी तालियां उनके लिए एक बार फिर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब जावेद मीर भाई, तो अब क्योंकि कमर्शियल का टाइम हो गया है, कमर्शियल के बाद जावेद मीर भाई से मिलते हैं, तो सुनते रहिएगा, साथ साथ रहिएगा।
7: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
8: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
7: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
8: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
9: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: अपना संडा रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और दोस्तों लाइव कॉल का सिलसिला है जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो अब चलते हैं तालियों की गूंज में। खुश आमदीद, वेलकम जी एन, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे जनाब हमारे प्यारे भाई, प्यारे दोस्त जनाब जावेद मीर भाई को। जावेद मीर भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: कैसे हैं मेरे भाई, ठीक हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, बस थोड़ी बहुत गड़बड़ होती रहती है।
0: चलो अल्लाह ख्याल रखे, अल्लाह किसी का मोहताज ना करे, लंबी उम्र दे आपको, अल्लाह सेहत वाली दे, किसी का मोहताज ना करे कभी भी। तो इस वक्त मोहताजी बहुत बहुत मुश्किल है, मोहताज हो जाए बंदा तो फिर एक बंदा वो नहीं होता, लाचार होता है, जो पूरी फैमिली जो रिलेटेड होते हैं उनके साथ वो भी समझो फंस गए हैं, मोहताज हो गए हैं क्योंकि कहीं जा नहीं सकते, खिदमत में लगे रहते हैं। जी जी बिल्कुल, अल्लाह ताला हर को से दे कमला दे। और जी अगर ऐसी बात हो अपने हबीब के सदके चलते फिरते उठा ले कि मोहताजी बहुत बुरी चीज़ है जी, बहुत बुरी है जी।
1: तो मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को और मेरे दोस्तों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: जी जी
1: मुकेश का एक गाना है, कभी कभी फिल्म से।
0: हाँ कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है या कोई और है?
1: यही है।
0: अच्छा अच्छा ठीक,
1: चलो तमाम सुनने वालों की नजर करते हैं और दोस्तों की नजर करते हैं, आपकी भी नजर।
0: थैंक यू सर, थैंक यू।

जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों

अमानत है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

है, मगर यूं ही मैं जानता हूं कि तू गैर

0: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, क्या गीत है सदाबहार की, जब भी सुने बड़ा लुत्फ बड़ा मज़ा आता है इस गीत को सुनने में। और आपने बड़े प्यारे अंदाज में गाया, जब बंदा अपने अंदाज में गाता है तो अच्छा लगता है। तो बहुत शुक्रिया जी।
1: मैंने कहा कोशिश की है।
0: बहुत अच्छी कोशिश की आपने, बहुत अच्छा गीत गुनगुनाया मुकेश का। और ऐसे गीत देखिए कितने पुराने हैं, फिर भी जब ये गीत सुनते हैं तो बहुत ही भले और अच्छे लगते हैं, और दिल को थोड़ा सुकून सा होता है और बड़ा इंजॉय करता है बंदा। आजकल के गाने हैं वो एक बार दो बार सुन लो तो फारग, लेकिन ये जो पुराने गीत हैं ना, क्या बात है इनकी, ये जब भी आप सुनते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि अभी बस चंद रोज़ पहले सुना, दो बार सुना, तो इनसे दिल नहीं भरता। ये बहुत प्यारे गीत होते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने बहुत अच्छा गीत चुना इस प्रोग्राम में। अल्लाह आपको सलामत रखे, से मुस्कुराते रखे और खुश रहो खुर्रम रखे। तो शुक्रिया आपका, आप आए और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी, बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ढेर सारी तालियां जनाब जावेद मीर भाई के लिए, क्या इन्होंने गीत गाया मुकेश की आवाज़ में, गीत गाया गया ये कभी कभी फिल्म से लिया हुआ, और बड़ा फेमस गीत आप सभी दोस्तों के लिए। और आप जनाब कोई कॉल नहीं लूँगा क्योंकि वक्त हमें बता रहा है कि जहर की अजान का वक्त हो चुका है, तो इसलिए अजान की तरफ जाएंगे और उसके बाद देखेंगे, अगर कोई आया तो ठीक, नहीं तो फिर आपके लिए एक प्यारा सा गीत होगा जनाब। तो चलते हैं, सुनते हैं जोहर की अजान, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं।
2: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी सामिन, अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:42, यानी कि 42 मिनट्स पास्ट वन, और अब इसके साथ वक्त जो है वो कमर्शियल का भी हो चुका है, तो चलेंगे कमर्शियल सुनेंगे। अगर कोई दोस्त आने रहना चाहे, जो कम ही चांस लगता है क्योंकि कुछ एंड पे मसला हो जाता है, तो एनीवे अगर कोई आना चाहे तो आपके लिए लाइनें खुली हैं। नंबर होगा 01274306666। और अब जैसा कि मैंने कहा कि कमर्शियल का टाइम हो गया है, कमर्शियल के बाद अगर कोई नहीं आया तो आपके लिए एक प्यारा सा गीत होगा जनाब, आप सभी सुनने वालों के नाम। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।
3: दिस इज अ मैसेज फ्रॉम मर्सिडीज बेंज वैंस इन एसोसिएशन विद योर वेरी ओन सनराइज रेडियो। व्हेन यू रन योर ओन बिजनेस, योर वैन इज इन जस्ट ट्रांसपोर्ट, इट्स योर लाइवलीहुड एंड रेप्यूटेशन। That's why Mercedes-Benz vans created the Uptime Promise, a complete suite of business advantages. Things like 24/7 roadside assistance, extended workshop hours, real-time vehicle monitoring. In fact, everything you need to stay in control of your van downtime and keep your business moving. Mercedes-Benz vans has got your back. Search Mercedes-Benz vans today and discover their Uptime Promise. TNCs apply. The Mercedes-Benz van's uptime promise is subject to eligibility criteria, vehicle compatibility, and servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Terms and conditions apply. Learn more at mbvans.co.uk/uptimepromise.
4: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and Maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
5: My favourite radio station, Sunrise Radio.
6: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move

बहुत ही प्यारा गीत था, फिल्म का नाम भी था मेरे हम सफ़र, 1970 की फिल्म है ये। और लता जी और मुकेश को आपने सुना बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत ही प्यारा गीत है, दिल की अथाह गहराइयों तक ये उतर जाता है गीत, बड़ी प्यारी शायरी है, बड़ा रोमांटिक गीत था और आप दोस्तों के लिए पेश किया। और दोस्तों आप क्लॉक की जानिब निगाह गई तो लगता है कि लगता नहीं बल्कि ये हमारे प्रोग्राम का आखिरी गीत होगा। उम्मीद रखता हूँ आज दोस्तों को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। उन दोस्तों का भी शुक्रिया जो दोस्त फोन कर किया, जिन्होंने प्रोग्राम में शमूलियत की, और उन दोस्तों का भी शुक्रिया जो सुनते रहे प्रोग्राम को, और ख़ासकर उन दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लाइव कॉल्स में आए और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। बहुत अच्छा लगा, तो आप दोस्तों का साथ बहुत प्यारा था। तो दोस्तों अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगबान एंड गुड बाई।

सस्यकाल एंड वेरी वेरी गुड डे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन अभी तक खूबसूरती से गुजर रहा होगा और मेरी दुआ है कि आप हमेशा सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ भी रहें अपनों के साथ साथ रहें। आमीन। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप सबके दुख दर्द, बीमारियाँ, परेशानियाँ जो भी हैं उनको दूर फरमाए, बहुत जल्द आपको सेहतियाब, तंदरुस्ती और आपकी मुश्किलात को आसान कर दे। आमीन। मैं हूँ शहनाज़ मंसूर, आपके साथ रहूँगी अगले 3 घंटे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ ज़रूर निभाएंगे। मोहब्बतों, चाहतों और दुआओं का सफ़र है आपके साथ साथ, हमें गुजारना है, आपके साथ साथ चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप भी हमारा साथ देंगे।

0: कफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.

मुझे उम्मीद है कि आपको आज का शो अभी तक जो भी हमने पेश किया गीत वो आपको पसंद आ रहे होंगे और यकीनन आने वाले गीत भी आपको अच्छे लगेंगे। बहुत ही खूबसूरत और प्यार भरे गीत हैं जिन्हें हम आपके लिए लेकर आए हैं और खूबसूरत गीतों का खजाना है जिसे लौटाएंगे हम आप पर। चाहेंगे आपका खूबसूरत सा साथ और बिताएंगे इस खूबसूरत सफर को आपके साथ।

आप तमाम साथियों का, भाइयों का, बहनों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम की जीनत बन चुके हैं, जिनका साथ और प्यार हमें मिला। आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपकी मशकूर और ममनून हूँ कि आप अपने कीमती वक्त से चंद लम्हे हमें नवाजते हैं। और आपका साथ हमेशा बहुत प्यारा होता है और आपके साथ साथ ये सफ़र और भी खूबसूरत और हंसी हो जाता है। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है आपके साथ का और प्यार का। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।

कमर्शियल्स और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं, खुश आमदीद, वेलकम और जी आयनु कहते हैं। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस घंटे में भी और अगले घंटे में भी आप हमारा साथ ज़रूर निभाएंगे जैसे कि निभाते आए हैं। आपके साथ साथ ये सफ़र बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है और आप हमारे प्रोग्राम की जीनत होते हैं और आप हमारे प्रोग्राम की रौनक होते हैं। जब आप आते हैं तो ये महफिल और भी पुर रौनक हो जाती है और हमारा सफ़र खूबसूरत और हसीन बन जाता है। आपका शुक्रिया।

आप हमें सुन पाते हैं सनराइज रेडियो पे 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे। इसके अलावा आप हमें सुन पाते हैं डीएबी के जरिए ब्रैडफोर्ड, लीड्स, मैनचेस्टर और इर्द गिर्द के इलाकों में, और 100.6 एफएम पे आप हमें सुनते हैं कालडर डेल में। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं सनराइज रेडियो को सुनने के, आप आपके जरिए भी हमें सुन पाते हैं और नेट पे भी, गूगल के जरिए भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहें जहाँ चाहें आप हमें सुन पाते हैं सनराइज रेडियो को 24 घंटे। और मैं हूँ शहनाज मंसूर, आपके साथ साथ हूँ खूबसूरत गीतों के साथ। आपका शुक्रिया।

0: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 692378.
2: Official Media Partner Sunrise Radio.
3: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
4: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
3: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
4: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
3: बुकिंग और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274733732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

आपने सुना, जरूर आपको अच्छा लगा होगा और इसके साथ साथ आपकी बहुत सी यादें ताज़ा हो गई होंगी, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि जब आप गीत सुनते हैं तो उसके साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। यही नहीं कि हम गीत सुनते हैं बल्कि ये हमें वहाँ पहुँचा देता है जहाँ हमने पहली बार ये गीत सुना था, और ऐसे लगता है कि हम फिर से उसी जगह पर लौट आए हैं और वही दोस्त और वही साथी फिर से हमारे साथ बैठे हैं और इस गीत का मज़ा ले रहे हैं, और इस गीत का मज़ा और भी दुगना हो जाता है। जैसे कि ये आने वाला गीत भी हम आपके लिए लेके आए हैं, यकीनन आपकी यादों को ताज़ा करेगा और आपकी दिल की धड़कनों को भी तेज करेगा।

हम आ पहुंचे हैं आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है जी आयानू वेलकम। पिछले दो घंटे साथ निभाने का, हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। मुझे यकीन है कि इस घंटे में भी आप ज़रूर हमारा साथ निभाएंगे और इस घंटे में भी जो गीत हम आपके लिए पेश करेंगे वो भी आप ही के लिए होंगे और आखिर तक आप ही के लिए रहेंगे। सुनते रहिएगा और साथ साथ रहिएगा। आपके साथ का शुक्रिया।

0: देखा था, इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तेहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें

अब्बास कहते हैं कि किसी शाम मुझे भी याद कर लिया करो, किसी शाम मुझे भी याद कर लिया करो, मैं दोस्त पुराना सही मगर जिंदा तो हूँ। और इसके जवाब में परी शाकर कहती हैं, तुमने कहा था हर शाम तेरा हाल पूछेंगे, तुमने कहा था हर शाम तेरा हाल पूछेंगे, तुम बदल गए हो या तुम्हारे शहर में शाम नहीं होती। चंद अशआर आपके गोशे गुजार किए, मुझे यकीन है कि आपने इंजॉय किए होंगे। और आप हमेशा शायरी पसंद करते हैं और शायरी बोलना भी पसंद करते हैं, और मुझे भी कभी कभी शौक आ जाता है कि आपको कुछ अशआर सुनाऊं। ऐसे ही चंद ये जो अशआर थे आपके लिए पेश किए, और अब आपके लिए लेके आ रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो कि यकीनन आप पसंद करेंगे और इंजॉय भी करेंगे।

0: ये मैसेज मर्सिडीज बेंज वैंस की ओर से है जो सनराइज रेडियो के साथ मिलकर भेजा गया है। जब आप अपना बिजनेस चलाते हैं तो आपकी वैन सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं होती, ये आपकी रुजे रोटी और आपकी साख होती है। इसलिए मर्सिडीज बेंज वैंस ने अप टाइम प्रॉमिस बनाया है जो बिजनेस के लिए कई तरह के फायदे देता है, जैसे कि 24 घंटे सातों दिन रोड साइड असिस्टेंस, वर्कशॉप के बढ़े हुए घंटे और गाड़ी की रियल टाइम मॉनिटरिंग। असल में इसमें वो सब कुछ है जो आपको अपनी वैन के डाउन टाइम को कंट्रोल में रखने और अपने बिजनेस को चालू रखने के लिए चाहिए। मर्सिडीज बेंज वैन्स हमेशा आपके साथ है। आज ही मर्सिडीज बेंज वैन सर्च करें और उनके अप टाइम प्रॉमिस के बारे में जानें। नियम और शर्तें लागू। मर्सिडीज बेंज वैन्स का अप टाइम प्रॉमिस, पत्राता के नियमों, गराई की कंपैटिबिलिटी और मर्सिडीज बेंज के अधिकृत रिपेयरर से सर्विसिंग करवाने पर निर्भर करता है। नियम और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए mbvans.co.uk/uptimepromise पर जाएं।
1: गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
2: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
3: Classic hit, flashback, flashback, as we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

आज का सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा, क्योंकि आप हमारे हम सफ़र थे, और इस सफ़र को खूबसूरत बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ साथ थे, इसीलिए ये 3 घंटे बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही हसीन रहे, क्योंकि आपका साथ और आपका प्यार और आपकी दुआएं हमारे साथ थी। इंशाल्लाह हमारा प्यार और हमारी दुआएं भी हमेशा आपके साथ साथ रहेंगी और हमेशा रहेंगी। आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। आप जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। मिलते रहेंगे सनराइज रेडियो पर इंशाल्लाह। आज की मुलाकात बस यहीं तक थी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक आप सबका और हमारा अल्लाह निगेबान। बाय फॉर नाउ, खुदा हाफिज़, गुड बाय।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज। चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।

0: नफ्सेन ज़ायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
0: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

0: चलिया कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Experience something truly spectacular as the internationally renowned flower carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
1: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ दो पौंड ना कानस लाने ना एक पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
3: The classic hit, Flashback. Flashback, as we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: people in the place to be. All you listeners.
1: Salaam namaste. Salaam namaste.
2: जिससे दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा हुआ है सी।
3: Always Khan.
4: हम शरीफ क्या हुए?
5: मैं वापस
4: पूरी दुनिया ही बदमाश
3: Always.
5: देखो मैं हूँ कहाँ
3: Always Khan.
5: आ रहा हूँ पलट के मैं हूँ।

0: अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सभी का खुश आमदीद वेलकम टू सनराइज रेडियो 103.2 FM 100.6 FM अक्रॉस द वेस्ट यॉर्कशायर आपका होस्ट दोस्त यहाँ भी हाजिर है मेरा नाम परवेज़ आई एम हियर टिल अलहम्दुलिल्लाह बीर शाम और आप सबके नाम रंग महफिल का प्रोग्राम है एंड टुडे इज द 16th of the 9th 2026 द वेदर हैज बीन सच अ लवली डिवी रोमांटिक मौसम है कहाँ पे जा रहे हैं कहाँ पे आ रहे हैं व्हाट इज योर ब्यूटीफुल प्लान्स फॉर द ब्यूटीफुल इवनिंग And if you want to give me a call, it's 012-743-0966. I'm going to play for you the hit of the hour. I hope you're going to enjoy this wonderful, wonderful tune. 012-743-0966.
1: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

0: एंड दैट वाज अ हिट ऑफ द आवर, आपने एंजॉय किया और बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे दोस्तों का जो मुझे फोन करने, और यहाँ भी हमने करना है टाइम चेक।
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: Right, the time in the studio is 8:15 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked in, keep it locked down with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के फौरन बाद I will mention you all your name, hello, hi, किदा, whichever is gonna be. And लाइनें यहाँ पे चमक रही हैं, दमक रही हैं, और यहाँ पे मेला लग रहा है और हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी. If you are driving, drive with care. If you are out and about, make sure you stick around with the Sunrise Radio on 100.6 FM, 103.2 FM, across the West Yorkshire. और यहाँ पे निकी जी ब्रेक होगी, ब्रेक के फौरन बाद हम दोबारा आपके साथ हम कलाम होंगे. Keep it locked.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे. पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ.
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है. शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था.
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274056014. सोफी ज्वेलर्स.
4: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
5: The greatest station, radio station in the world, Sunrise Radio.
0: Right, welcome back, listener. And I'm moving on to the beautiful callers and the tracker. And thank you very much. And we had a lovely, lovely caller from हमारे मोहतरम हैं और हमारे मीठा जी हैं और चौधरी रुखसार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आपने हमें फ्लश किया और बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. देन वी हैड अ लवली कॉलर फ्रॉम वाजिद भाई, जिन्होंने हमें फ़ोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का. एंड यू मिस्ड मी, थैंक यू वेरी मच. और उजरा अफजाई करने का दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया. एंड देन वी हैड अ सिमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. अतिका साहब ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर, आपने हमें याद करने, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी. और सोनिया जी हैं बर्मिंघम, आपने हमें याद करने, बहुत बहुत शुक्रिया. आने वाला गीत आपके लिए भी होगा और बहुत ही अच्छा लग रहा है. और अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमारा साथ दे रहे हैं, और शुक्रिया शुक्रिया. और एनीवे, मूविंग ऑन टू द ट्रैक, और हमारा साथ जिन्होंने मैंने पहला दिया, और रुखसार भाई, ये गीत आपके लिए और आपके दोस्तों के नाम होगा. मुझे उम्मीद और यकीन है इस गीत को आप इंजॉय करेंगे. बहुत खूबसूरत गीत है. आने वाला गीत आप दोस्तों के लिए और आपकी पूरी जो फैमिली दोस्त अहबाब अजीज हैं उनके लिए गीत होगा. मुझे उम्मीद और यकीन है कि वो इस गीत को एंजॉय करेंगे. कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो.

0: Right, that was a wonderful tune. Or आप ने enjoy किया और सब is all about आँखें, खूबसूरत आँखें और आँखें के बारे में मैं क्या कहूँगा यहाँ पे and it is amazing. Anyway, यहाँ पे छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक होगी. ब्रेक के फौरन बाद I wanna play another beautiful track for हमारे गिदन भाई हैं, हमारे पापी जन सुमित्रा जी हैं, all the way from Milton Keynes में हैं और शहीद एहसान from London West London से उन्होंने फ़ोन किया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमारा साथ दे रहे हैं. और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक होगी और आपने कहीं पे जाना नहीं, ठीक है. कीप इट लॉक्ड एंड कीप इट लॉक्ड ऑन विद परवेज खान. और यहाँ पे सनराइज रेडियो.
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 3538. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे. पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ.
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है. शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था.
3: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274-056-014. सोफी ज्वेलर्स.
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तेहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है. हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है. हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें.
0: Right, welcome back, listeners, and thank you very much for keeping busy here. Or I've got a beautiful message for you on the Sunday Radio Listener Choice Award 2026 are coming soon, celebrating the businesses, organizations, venues, artists you love. Voting will be exclusive to the Listeners Club members, so join free at sunrise.radio. Keep listening for more information, more details. And that is all about Sunrise Radio. Anyway, moving on to the track. Aur ye woh geet, khoobsurat geet aane wala hai. Gidan bhai, ye aapke liye hoga. Hamare papi jaan, Smitra ji, ye geet aapke liye bhi hoga. Aur yehi geet main pesh karunga. Hamare mohtarme bhai hain, dost hain. Abdul Qayyum Surprising aur se ye geet aapke liye hoga. Sonia ji, all the way from Birmingham. Atika sahib, ye geet aapke liye hoga. Nadeem Mansoor sahib, ye geet aapke liye hoga. Mujhe umeed aur yakeen hai, is geet ko aap enjoy करेंगे. एंड इट्स अ वंडरफुल ट्यून. यू नो व्हाट, दिस ट्यून इज बहुत खूबसूरत गीत है और हमारे मीठा जी ये गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूं. एंड आई होप यू गोना एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून. चौधरी रुखसार भाई, ये गीत आपके लिए होगा. एंजॉय द ट्रैक.

Right, and that was a wonderful tune. And moving on to another beautiful track, because I try to play as much track I can this hour. And yeah, we'll get me pesh karne ja raha hu hamari bahut hi pyari behna hai, hamari sister hai, mashallah. Allah ta'ala unko lambi zindagi de aur badi izzat wali de. Bahut bahut shukriya. And you know what? Thank you very much. Aapne welcome kiya, jiyan khush aamdeed. Aapne badi achhe alfazon mein aapne yaad kiya hai aur ye main geet mein pesh karne ja raha hu. Mujhe umeed aur yakeen hai ki meri pyari behna jo meri aapi hain, wo is geet ko enjoy karengi. Aur ye aapi kaun hai? Aur mashallah, ye meri bahut khoobsurat aapi hain, शिनाज. और शिनाज जी, ये गीत आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. और यही मैं पेश करने जा रहा हूँ, सिमी जी हैं और आपकी पूरी फैमिली के लिए, अब्दुल कयूम साहब हैं. ये गीत आपके लिए होगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. बहुत खूबसूरत गीत है. दिस ट्रैक इज अमेजिंग ट्रैक. एंड फॉर ऑल दोज लवली लवली कॉलर्स, ऑल द कमर्शियल लिसनर्स, नो फॉरगेट ऑल द चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर्स है. और यही गीत मैं पेश करूंगा. हमारे जो मैनचेस्टर में सुना जा रहा है प्रोग्राम, रशदेल में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है, पाकिस्तान में प्रोग्राम हमारा सुना जा रहा है, ये गीत आप सबके लिए होगा. एंजॉय द ट्रैक.

0: आपने बहुत खूबसूरत गीत सुना, समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक, और आपने इंजॉय किया, पसंद किया। असमी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन किया, दोबारा फ़ोन करने का, हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और वाजिद भाई आपने भी दोबारा फ़ोन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने गानों को पसंद करें, इंजॉय करें। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि क्योंकि जो मेरे हेडफोन में है, हमारे कमरी जी कह रहे हैं कि आपने करना है टाइम चेक करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्यों ना यहाँ पर हमने करना है टाइम चेक।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, the time in the studio is 46 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep a lockdown with the Parviz Khan. And here, छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक होगी, और ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे गीत होगा और सब सुनने वालों का गीत होगा। बहुत ही नायाब गीत, बहुत खूबसूरत गीत है और बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमारा साथ देने, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और जो विद हेल्प नंबर मुझे फ़ोन करने उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि आपने हमारा साथ दें। और यहाँ पर छोटी सी ब्रेक करेंगे, कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो।
2: No, sorry, mate.
3: No, we don't have that part.
4: Have you tried down the road?
5: We can get it in, but it won't be for a few days.
6: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz Vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
7: Experience something truly spectacular as the internationally renowned flower carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
8: Sunrise and Music. It's a classic hit. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

Right, that was a tune that I played and you enjoyed it. And मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी तारीफ़ की है प्रोग्राम की, गानों की तारीफ़ करने. रुकिया जी हमारी बहुत प्यारी बहना हैं, उन्होंने हमें याद किया और फ़ोन करने का, उज़्र अफ़ज़ाई करने का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया. आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा और आपकी पूरी फैमिली के लिए होगा और आप इन्जॉय करेंगे, फैमिली के साथ इन्जॉय करें. मुझे अच्छा लग रहा है ये सुन के कि यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर लव वन, विद योर फैमिली, एंड दैट इज़ अमेजिंग, अमेजिंग टू हियर द. एंड मैं कहता हूं कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें. एंड व्हाट अ इवनिंग एंड व्हाट अ अमेजिंग इवनिंग हैज बीन. एंड थैंक यू फॉर ऑल दोज लवली लवली कॉलर फ्रॉम ऑल ओवर यूके एंड नॉर्थ अगेन एंड पाकिस्तान एज वेल. और हमें अच्छा लगा सुन के कि आपने गाने को पसंद किया, गाने को इंजॉय किया और मेरे साथ आपने टाइम स्पेंड किया. एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. और महबूब लैसा बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है. और यहां पे हमने क्या करना है कि यहां पे ये गीत पेश करेंगे सब सुनने वालों के लिए होगा, जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त अहबाब हैं, अजीज हैं, ऑल द चोरी चोरी छुपके छुपके लक्षण साले लक्षण, जो नए हैं, आने हैं, आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, सबके लिए गीत होगा. और ये गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ. आई होप यू गोना एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून. दिस ट्रैक विल टेक मी टू द 9 o'clock न्यूज. लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. कीप इट लॉक्ड.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Experience something truly spectacular as the internationally renowned flower carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
3: गलियां गलियां कुमी, ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
4: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
3: चाचा, केड़ा चाचा?
4: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्हाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी, नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना, कानस लाने ना 1 पौंड, छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
4: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
5: Right, welcome back here, listener. You're listening to Sunrise Radio 100.6 FM, 103.2 FM across the West Yorkshire. Or you have heard one of beautiful attack hitter of the hour. Maine pesh kiya hai aur aapne enjoy kiya. Aur yahan bhi humne karna hai time check, which is very, very, very important.
6: Sunrise Radio. Your soundtrack, your time check.
5: We're on the time in the studio is 14 minutes past the 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night to wherever you are. Keep it locked on with the Parvez Khan. यहाँ पे लाइव कॉल का सिलसिला होगा अब से लेकर 11 o'clock तक, और जो हमारा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। और यहाँ पे आगाज करने जा रहे हैं और आप सब दोस्तों के लिए सरप्राइज होगी, यहाँ पे हमारा साथ कौन दे रहे हैं।

0: राइट लेडी एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, और यहाँ पे मेरा साथ देने आपके दोस्तों के लिए सरप्राइज है। और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम जी अनु, खुश आमदीद, और ये आपके लिए, ये हैं हमारे बहुत प्यारे भाई हैं महबूब लाई साहब, जिनकी खूबसूरत आवाज़ है और क्या आवाज़ इन्होंने पाई है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आप आए, और हम शुक्रिया अदा करते हैं अतिका साहब का जिन्होंने आपको मौका दिया कि आप पहले आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, आपका शुक्रिया,
1: उनका बहुत शुक्रिया।
0: क्या कहने जी, वाह,
1: बड़ी बहुत ही मेहरबानी जी, अतिका जी का बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: तो आज आपने कहा कि मैंने तो वैसे कॉल की तो आपने कहा कि नहीं गीत होना चाहिए,
0: गीत होना चाहिए सर, गीत बड़े दिन हो गए, बड़े हफ्ते हो गए, आजकल वो छाए हुए दुनिया में, क्या कहने मेरे भाई के, वाह।
1: तो मैं किशोर का गीत तो यहाँ नहीं थे मेरे पास, अनैसन भट्टी का सामने लिखा
0: हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी आपकी आवाज में होगा।
1: तो जी जी, तो ये है और नजर करना चाहेंगे, चौधरी मुजफ्फर है, तारिक जुल्फी है, महमूद सुल्तान कराची वाले हैं, चौधरी रक्सार, चौधरी फरियाद और आसन रियासत, जवेद मीर और अधिका जी हैं और हमीदा जी हैं और गगन भैया हैं और भाभी हैं और आपके नाम, सभी के नाम
0: अजन
1: एसन बट्टी के अंदाज में है ये गीत।
0: जी
1: शुरू करते हैं
0: जी।
1: और जो लिस्ट अधिका जी के पास है जिन दोस्तों के नाम रह गए हैं
0: जी, जी।
1: वो लिस्ट और चौधरी रक्सार साहब की लिस्ट में जितने भी दोस्त हैं सभी के नाम जी।
0: बहुत शुक्रिया।
1: ਐਵੇਂ ਹੀ ਭੱਜ ਪਾ ਕੇ ਰੁਸ ਬਹਿਣਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹਰਾਮ ਸੋਨੀਏ ਐਵੇਂ ਭੱਜ ਪਾ ਕੇ ਰੁਸ ਬਹਿਣਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹਰਾਮ ਸੋਨੀਏ ਐਵੇਂ ਭੱਜ ਪਾ ਕੇ ਰੁਸ ਬਹਿਣਾ ਕੰਨ ਜੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਜਦੇ ਕੰਨ ਜੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਜਦੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੱਬਦੇ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੱਬਦੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਖੈਣਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹਰਾਮ ਸੋਨੀਏ ਐਵੇਂ ਭੱਜ ਪਾ ਕੇ ਰੁਸ ਬਹਿਣਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹਰਾਮ ਸੋਨੀਏ ਐਵੇਂ ਭੱਜ ਪਾ ਕੇ ਰੁਸ ਬਹਿਣਾ ਝੂਠੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਰਾਂ ਚੁਤਾੜੇ ਝੂਠੀ ਮੋਟੀ

नी होंदा ही हराम सोनिए एवें पज पके रुस बैना सियाने दा कहना नी होंदा ही हराम।

तेरा महकदा सजने फुला वांगू रूप तेरा महकदा तेरे बाजों कलिया प्यार मेरा सहकदा प्यार मेरा सहकदा सजना तो वख वख रहना ते शक विच पैना नी होंदा ही हरा।

0: भजपा के रुस बैना।
1: होई होई होई होई सदके जावा कुर्बान जावा, क्या कहने, कितनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है और गाना भी इतना खूबसूरत है, बड़ा ही प्यारा। बड़े दिनों के बाद ये मैंने गाना सुना है और वो भी आपकी खूबसूरत आवाज़ में, और हमारे और आपके शहजादे भी प्रोग्राम सुन रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहने मेरे भाई, महफिल आपने लूट ली है, क्या कहने क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा एंजॉय किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये थे हमारे मोहतरम, हमारे दिल अजीज महबूब लाइफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और यहाँ में हमारा साथ दे रहे और वेलकम कहेंगे, जिया कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे। और अतीका साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: आप ठीक ठाक से? ठीक आपकी?
2: जी सब अल्लाह का शुक्र है।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपने गाना सुना है महबूब लाइफ साहब का, कितना खूबसूरत गाना उन्होंने गुनगुनाया, क्या कहने।
2: मैंने कहा आपने आगाज बहुत खूबसूरत आवाज से किया, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत सलाम।
1: वालेकुम सलाम।
2: तो उन्होंने खूबसूरत सॉन्ग पंजाबी का सुनाया,
1: पंजाबी का बहुत खूबसूरत,
2: बहुत अच्छा लगा
1: जी।
2: और हमें, मेरे ख्याल है सबको ही अच्छा लगा होगा।
1: बड़ा ही प्यारा गीत है, बड़े दिनों के बाद मैंने गाना सुना, क्या आवाज है, वाह।
2: तो बहुत अच्छा लगा आगाज जो इतना खूबसूरत हुआ
1: जी।
2: तो इस रंगे महफिल में जितने भी लोग आते हैं
1: जी,
2: खूबसूरत आवाज के साथ खूबसूरत शायरी सॉन्ग सुनाते हैं
1: जी।
2: और सबसे पहले तो आप जब आगाज करते हैं
1: जी,
2: वो बहुत खूबसूरत आगाज सॉन्ग के साथ करते हैं, जो इतने खूबसूरत सॉन्ग होते हैं
1: जी,
2: पता चलता है कि ये वाकई ही रंगे महफिल की।
1: वाह जी वाह, क्या कहने क्या कहने, थैंक यू।
2: बहुत खूबसूरत सॉन्ग थे आज भी माशाल्लाह हमेशा की तरह
1: जी।
2: तो और इस महफिल के सब चांद सितारों को बहुत बहुत सलाम
1: जी।
2: तो सबसे पहले तो हमारी सुमित्रा जी हैं, गीदर भाई हैं
1: जी,
2: रेखा जी, उनको नमस्ते
1: जी।
2: वो आएंगे और खूबसूरत, लास्ट टाइम उन्होंने दो गाने सुनाए,
1: बड़े खूबसूरत गीत है, बड़े प्यारे गीत है जी
2: जी, बहुत ही नाइस और बहुत खूबसूरत उन्होंने महफिल सजाई थी। आज भी उम्मीद है कि
1: वो आएंगे इंशाल्लाह, उन्होंने फोन किया था माशाल्लाह, वो आएंगे इंशाल्लाह।
2: वो खूबसूरत आवाज के साथ हमें गाना सुनने को मिलेंगे, जैसे कि महबूब इलाही साहब ने सुनाया
1: जी,
2: खूबसूरत आगाज किया
1: जी।
2: तो अपना नौशीन जी हैं, शाहपरी हैं, जुलेखा जी हैं
1: जी,
2: सलीना जी हैं, सितारा जी हैं, सितारा जी भी बहुत देर होगी नहीं आई
1: जी,
2: तो उम्मीद है कि वो आएंगी इंशाल्लाह
1: जी।
2: आशिया जी हैं, रुखसाना अफजल हैं, हमीदा जी हैं, और चौधरी फरियाद साहब हैं, उनका भी इंतजार है, वो भी आएंगे अपनी खूबसूरत आवाज के साथ
1: जी।
2: तो पंजाबी की शायरी पेश करते हैं हमेशा ही। तो नदीम मंसूर साहब हैं, उनका वो भी जब आते हैं तो खूब रंगीन महफिल हो जाती है
1: जी जी, कोई शक नहीं।
2: पापा जी हैं, शकील जी हैं, वो आएंगे महफिल लूटेंगे, और सलीम भाई हैं, अब्दुल कयूम साहब हैं, वो भी बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं और
1: आज कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं। उन्होंने मुझे फोन किया, कहते मैं रेडी बैठा हूँ, तैयार बैठा हूँ। मैंने कहा क्या बात है, जबरदस्त,
2: बहुत खूबसूरत सॉन्ग होते हैं उनके और बहुत खूबसूरत शायरी होती है। मुदस्सर कियानी साहब हैं, सजाद साहब हैं, साजिद पहलवान साहब हैं, वाजिद भाई हैं, फेरहमान साहब हैं, महबूब इलाही साहब हैं, तारिक बट साहब हैं, राना नवीद साहब हैं, शुक्रान भाई हैं, एहसान भाई हैं, चौधरी रुखसार साहब हैं, फिर आसिफ रियासत साहब हैं, रावजर हुसैन साहब हैं, उनका भी बहुत इंतज़ार होता है, खूबसूरत बातें उनकी और सुनने को मिलती हैं, इंशाल्लाह वो भी आएंगे। सबको बहुत बहुत सलाम, कुछ शायरी है
1: जी जी अरशाद
2: की नजर करेंगे
1: जी।
2: ये अमजद इस्लाम अमजद की शायरी है जो कि मुझे बहुत पसंद है, इसलिए
1: जी
2: सबके लिए। मेरे हम सफर तुझे क्या खबर,
1: बहुत खूब।
2: मेरे हम सफर तुझे क्या खबर, ये जो वक्त है किसी धूप छाओ के खेल सा,
1: वाह।
2: ये जो वक्त है किसी धूप छाओ के खेल सा, इसे देखते इसे झेलते मेरी आंख गर्व से अट गई,
1: बहुत खूब।
2: इसे देखते इसे झेलते मेरी आंख गर्व से अट गई, मेरे ख्वाब रेत में खो गए, मेरे हाथ बर्फ से हो गए,
1: बहुत खूब।
2: मेरे ख्वाब रेत में खो गए, मेरे हाथ बर्फ से हो गए, ये जो एक रब्त था दरमियां वो बिखर गया, ये जो एक रब्त था दरमियां वो बिखर गया, वो हवा चली किसी शाम ऐसी हवा चली कि जो बर्ग थे सरे शाम जाम वो गिरा दिए।
1: बहुत वाला।
2: वो जो हर्फ दर्ज थे रेत पर वो उड़ा दिए, वो जो रास्तों का यकीन थे वो जो मंजिलों के अमी थे वो निशान पा भी मिटा दिए। मेरे हम सफर है वही सफर, मगर एक मोड़ के फर्क से तेरे हाथ से मेरे हाथ तक वो जो हाथ भर का था फासला कई मौसमों में बदल गया।
1: बोतल
2: इसे नापते इसे काटते मेरा सारा वक्त निकल गया। मेरे हम सफर तुझे क्या खबर। तो ये अमजद इस्लाम अमजद साहब की थी।
1: बहुत वाला, बहुत ही खूबसूरत। वाह,
2: थैंक यू। आंखों में आज आंसू फिर डबडबा रहे हैं, हम कल की आस्तीनें आज तक सुखा रहे हैं।
1: आहा, क्या कहने।
2: आंखों में आज आंसू फिर डबडबा रहे हैं, हम कल की आस्तीनें अब तक सुखा रहे हैं। हिसां जता जता कर नश्तर लगा रहे हैं, मेरी कहानियां सब मुझको सुना रहे हैं।
1: बहुत आला।
2: मेरी कहानियां सब मुझको सुना रहे हैं, आंसू गमों खुशी के जलवे दिखा रहे हैं। कुछ जगमगा रहे हैं कुछ जिल मिला रहे हैं।
1: बहुत खूब।
2: साकी के रूठने पर रंदों में बरहमी है, सागिर से आज सागिर टकराए जा रहे हैं।
1: वाह।
2: अब चाहे शक्ल फर्दा जितनी हसीन तर हो, जो दिन गुजर गए हैं वो याद आ रहे हैं। हिम्मत न हार देना है हसरत नजारा,
1: बहुत खूब।
2: एक आफताब से हम आंखें लड़ा रहे हैं। वैशी हैं किसके कितना सुथरा मजाक गम से, शबनम से आंसुओं के कतरे मिला रहे हैं। आंखों पर अपनी रख कर साहिल की आस्ती को, हम दिल के डूबने पर आंसू बहा रहे हैं।
1: वाह।
2: खिलता सिराज कुछ तो ये राज जिंदगी का, ये हर नफ्स में किसी के पैगाम आ रहे हैं। आंखों में आज आंसू फिर डबडबा रहे हैं, हम कल की आस्तीनें अब तक सुखा रहे हैं।
1: वाह जी वाह, क्या कहने।
2: है घर के मुहाफिज मेरी दहकी हुई आंखें, मैं ताक में रखाया हूँ जलती हुई आंखें। एक पल भी किसी मोड़ पे रुकने नहीं देती, कांटों की तरह जिसमें चुपती हुई आंखें। रस्ते में कदम फूंक के रखना मेरे प्यारो, हैं चारों तरफ शहर में बिखरी हुई आंखें। यूं इसके बिछड़ जाने पे आंसू ना बहाओ, यूं इसके बिछड़ जाने पे आंसू ना बहाओ, मंजर को तरस जाएंगी भीगी हुई आंखें। कातिल के सिवा कोई समझ ही नहीं सकता,
1: बहुत खूब।
2: क्या देखती हैं तश्त में रखी हुई आंखें।
1: वाह वाह वाह वाह।
2: क्या जानिए किस ख्वाब की ताबीर में गुम है, जुल्फों की गनी छाऊं में उलझी हुई आंखें। शबे तीरा में उजालों की अमी है, नफरत के समंदर में ये बहती हुई आंखें।
1: वाह वाह, क्या कहने।
2: है घर के मुहाफिज मेरी दहकी हुई आंखें, मैं ताक में रखाया हूँ जलती हुई आंखें।
1: बहुत खूब।
2: मेरी नींद आ मेरी बात सुन, मेरी इल्तिजा मेरी आह सुन। मेरी आंख के सभी रास्ते तेरी आहटों को तरस गए।
1: वाह, क्या कहने।
2: तेरी राहतों को तरस गए, तेरी बेरुखी की है इंतहा, तेरे हिजर में कटी रात सुन।
1: वाह।
2: मेरी नींद आ मेरी बात सुन।
1: वाह वाह वाह वाह।
2: तुझे क्या खबर, कई ख्वाब हैं तेरी राह में खड़े मुंतजर।
1: वाह।
2: तेरी चाह में हुए मुंतशर,
1: वाह।
2: जिन्हें तेरी कब से तलाश है, इन्हीं बांझ आंखों की राह चुन।
1: वाह।
2: मेरी इल्तिजा मेरी आह सुन।
1: बहुत खूब, बहुत आला।
2: कितने वसवसे तुझे घेर कर कहीं दूर लेकर चले गए, यूं कसूर देकर चले गए।
1: वाह।
2: मैंने दी सदा ये कहा भी था, जरा रुक तो जा मेरी बात सुन,
1: वाह
2: मेरी नींद आ मेरी बात सुन,
1: बहुत खूब बहुत खूब,
2: तेरी मुंतजर जो बिछाई हैं वही पलके देती हैं वास्ता,
1: वाह
2: कभी भूल आ तू भी रास्ता,
1: वाह वाह
2: बला हूँ बला यूं भी जाते हैं तोड़कर,
1: वाह
2: खुला दर को ऐसे ही छोड़कर,
1: वाह क्या कहने,
2: तेरी आँख के सवालात सुन, मेरी नींद आ मेरी बात सुन,
1: बहुत खूब
2: शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी खूबसूरत शायरी की आपने और हमने भी इंजॉय किया, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा,
2: शुक्रिया आपने इतना वक्त दिया आपका,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और यहाँ पर हमने छोटी सी ब्रेक की, सनराइज रेडियो
3: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
4: गलियां गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
5: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
4: चाचा केड़ा चाचा?
5: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
4: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
5: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935
1: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio on 100.6 FM, 103.2 FM across West Yorkshire. Aur yahan mein mera saath de rahe hamare mohtaram hamare bhai hamare dost Mohammed Rafi sahab mera saath de. Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू. कैसे हैं सर जी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. आप सुनाइए, सही ठीक है आपकी?
6: मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हमेशा की तरह इन वन पीस में हूँ.
1: हाय हाय हाय, क्या कहने, हमारी दुआ में आपके साथ है माशाल्लाह. क्या कहने जी,
6: बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी. सभी से जुदा जिसका अंदाज है, जमीन ता फलक जिसकी परवाज है,
1: वाह
6: वही जिन पे हमको नाज है. परवेज खान जी, आप ही की तो आवाज है.
1: हाय हाय हाय हाय, सदके जावा सदके.
6: हाय हाय, मजा आ गया,
1: मजा आ गया. चखा गे जी जी.
6: मीठा मीठा है मेरे मुखम

0: दो सलाम। और ये गीत पेश कर रहा हूँ आपके लिए मुबीन डॉक्टर पाशा गुरु भाई बाबी सेबा और सब सुनने वाले बहन भाइयों की नजर ये गीत कर रहा हूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।

हाय दिल बड़ा बेकरार रहता है जब ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब ये दिल उदास होता है,

एक मासूम सा सवाल लिए, एक मासूम सा सवाल लिए, जब ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है, जब ये दिल उदास होता है, जाने वा

जिसने सब को रचा अपने ही रूप में, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालो जरा इस अनोखे जगत।

लिए शिम के वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह जानने वालों जरा मेरे पास आओ छो

तुम्हारा भी गम देखता हूँ, तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें ना के अनजान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालो जरा मुड़ के देख मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जिसने सब को रचा अपने ही रूप में, उसकी पहचान हूँ।

0: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाह वाह वाह वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जितनी मैं तारीफ करूँ कम है और बड़े ही खूबसूरत और कमाल के गीत आपने गुनगुनाए, वन ऑफ माय फेवरेट ट्यून, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा,
1: बड़ी मेहरबानी
0: सर, आपकी सर क्यों मैं शर्मिंदा करते, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मोहम्मद रफी साहब और हमारी जान आन और बान और शान, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ पे वेलकम कहेंगे, जी कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हमारे गुरुजी आ गए।
2: वालेकुम सलाम भाईजान।
0: और मेरे भाईजान कैसे तबीयत आपकी, ठीक है, ठीक है आपकी?
2: एकदम ठीक ठाक, आपकी आवाज सुनी ठीक ठाक हो गई।
0: हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने, और ये आपके लिए सर। जी हजूर।
2: हाँ तो ये आपका गुरु जी बोल रहा है ना, अभी आपको गिरते तो बोलता नहीं।
0: हाय हाय हाय गुरु जी गुरु जी सब कहते हैं, गुरु दुनिया में चाह गए, गुरु जी हो रही है, वाह जी वाह,
2: वही ना, अभी गिरधर की जगह गुरु जी हो गया,
0: गुरु जी हो गया, आप छा गए, आप छा गए
2: जी के बदल में, अभी भाभी जान हो गए,
0: भाभी जान हो गया, क्या कहने जी, सुमित्रा जी के, वाह जी वाह, देखो ये कमाल का, सबका प्यार करते हैं आपके साथ और मोहब्बत करते हैं आपके साथ, जी वाह।
2: तो सबसे पहले हमारा शकील भाई, बोंदी वाला, जमीर भाई
0: जी,
2: मोहम्मद हनीफ भाई, साजिद भाई, वाजिद भाई
0: जी,
2: हमारा उस्ताद चौधरी फरियाद, सजाद पहलवान, इकबाल भाई
0: जी,
2: सईद जिशान, पापा शफीक, डॉक्टर मलिक साहब
0: जी,
2: मोहम्मद रफी साहब अभी आए थे,
0: अच्छा गाना गया, बहुत खूबसूरत गाना गाया जी।
2: न्यूयॉर्क से हमारा रॉबिनसन,
0: रॉबिनसन वाह जी वाह, वेलकम जी, अनिल खुश आमदीद,
2: अभी सुन रहा है प्रोग्राम, अभी टेक्स्ट आएगा,
0: अच्छा
2: अतिका जी को उसने सलाम भेजा है,
0: जी वालेकुम सलाम, वाह जी वाह, और रफी साहब आप आए और प्रोग्राम में शिरकत किया करें, और आए
2: वो काम पे है ना, इसलिए
0: हाँ काम पे, बड़ी मशहूर हस्ती है माशाल्लाह हमारे, बड़ी है रफी साहब, सब जानते हैं उनको, बहुत अच्छा इंसान है, वेरी नाइस,
2: तो वो अभी एक काम कर रहा है लेकिन साथ में रेडियो भी सुन रहा है,
0: वाह जी वाह, क्या कहने, ये खूबसूरती है आपकी जी,
2: हाँ बहुत सालों से हम जानते हैं एक दूसरे,
0: जी जी जी,
2: तो उसके बाद हमारा परवेज खान भाई
0: जी,
2: हमारी बेना समीना खान, आशिया जी है, अशिका जी है, सलीना जी है, हमारी समा जी है, क्रिंटन से
0: जी,
2: सिमी जी है, रेखा जी है, हमीदा जी है, सितारा जी है, मिस्टर मिसेस पटेल, वॉल्सल वाले, और जितने भी सुन रहे हैं सबको हमारा बहुत सलाम,
0: वालेकुम सलाम,
2: बताइए तो जो पहले जो जनाब आए जिसने गाया वो कौन था?
0: वो थे हमारे महबूब लाई साहब, अपना महबूब,
2: अच्छा महबूब साहब ने वो नाम बोला, उसको भी बहुत बहुत सलाम,
0: उन्हें आपको हमेशा ही याद करते हैं जब भी वो फोन करते हैं मेरे प्रोग्राम में, और आपके लिए दुआएं करते हैं, और हमारी भाभी जान के लिए भी, सुमित्रा जी के लिए भी दुआएं करते हैं, अच्छा लगता है जी,
2: थैंक यू जी, उसको बहुत सलाम,
0: वालेकुम सलाम।
2: तो ये हमारा मुकेश साहब का भी मैं अपने क्या अपने रॉबिनसन साहब के लिए मैं,
0: जी जी गो हेड जी,
2: हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं

0: हम छोड़ चले हैं महफिल को। थैंक यू।
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाह वाह वाह, जितनी भी मैं आपकी तारीफ करना कम है, और बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही खूबसूरत आवाज़ और जो गीत आपने गुनगुनाया मुकेश की आवाज़ में, बड़ा ही अच्छा लगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से और जो जो लिसनर हैं उनकी तरफ से आपके लिए ये। और यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद हमारी भाभी जान से, जो सुमित्रा जी हैं, जो दुनिया में जाने जाने और सब पहचानते हैं हमारी भाभी जान को, सुमित्रा जी को, और हम दोबारा हम कलाम होंगे क्योंकि हमने आठ ब्रेक करनी है और वो बहुत ज़रूरी है। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी भाभी जान को, हम वेलकम कहेंगे, जी हां कहेंगे, खुश आमदी कहेंगे और सत बिस्मिल्लाह कहेंगे थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पर हमने करना है टाइम चेक। थैंक यू जी। और यहाँ
2: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
1: Right time in the studio is 45 minutes past 9 in the UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked down with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक होगी। Keep it locked with the Sunrise Radio on 103.2 FM, 100.6 FM across West Yorkshire.
3: Sunrise Music.
2: Looking for a quality home to rent?
4: Whether you need a one, two or three bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
5: ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
6: ਓਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ।
5: ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ?
6: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰ ਓਕ ਲੇਨ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਕੰਡੀ ਮਾਰੀ ਨੱਕਾ ਨਤੀਲਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਪੌਂਡ ਨਾ ਕੰਨ ਸਲਾਣੇ ਨਾ 1 ਪੌਂਡ, ਛਾਪਾਂ ਤੇ ਬੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ।
5: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ?
6: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕ ਲੇਨ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9, ਟੈਲੀਫੋਨ 01274 488 935.
7: Classic hit of the hour, brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
8: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
1: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio. और यहाँ पे हम गाना सुनेंगे हमारी पापी जान की आवाज में, लाइव एंड डायरेक्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
9: वालेकुम सलाम भैया।
1: हाउ आर यू पापी जान? यू ओके? माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। और आपको सब सलाम करने वाले हैं, और आपके पिछले जो आवर में उन्होंने आपके लिए बड़े ही अच्छे पैगाम भेजे हैं और उन्होंने सलाम दुआ किया आपके लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया पिछले आवर में, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी और आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जी
9: थैंक यू, जिसने जिसने मेरे को सलाम दिया
1: जी,
9: बहुत शुक्रिया मांगती हूँ
1: जी।
9: ये हमारा रेडियो में इतना प्यार है भैया।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो आपको गुरुजी कहते हैं, हमारे भाई को गुरुजी कहते हैं, आपको भाभी जान कहते हैं। देखो ये दुनिया में यही खूबसूरत लोग हैं, दुनिया में खूबसूरत,
9: ये तो इसलिए तो रेडियो में मेरे को अच्छा लगता है।
1: माशाल्लाह, थैंक यू थैंक यू।
9: प्यार सब कुछ कुछ नहीं चाहिए, प्यार चाहिए,
1: प्यार चाहिए। आय हाय हाय, क्या कहने जी।
9: मैं सबको सलाम बोल दूं पहले?
1: जी जी, गो अहेड गो अहेड।
9: मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने रोमिंग साहब ने टेक्स्ट कर बताया।
1: वाह वाह वाह वाह। और इंशाल्लाह वो हम उनकी आवाज़ सुनेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे हमारे भाई हैं।
9: जिधर को टेक बोला है टेक कोशिश करेगा।
1: जी जी जी जी, माशाल्लाह।
9: टाइम डिफरेंट होता है ना
1: जी,
9: फिर भी इसने मतिका जी को याद किया अभी।
1: वाह जी वाह, क्या कहने,
9: सबको जानते हैं, पुराना रेडियो में जाते थे ना।
1: जी जी जी जी जी, माशाल्लाह बहुत बड़ी हस्ती है, माशाल्लाह हम सबको जानते हैं। जी जी,
9: इसको रोबिन साहब को मेरा स्पेशल सलाम।
1: वालेकुम सलाम।
9: शकील भैया, बोलने वाला जागरूक भैया, मोहम्मद
1: जी
9: भैया है, बाजी भैया ठीक हो गया होगा ना अभी? बाजी
1: जी जी, माशाल्लाह ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह,
9: खुदा करे ठीक रह जाए। चौधरी फैयाद भैया थे, कैसा है? ठीक है वो
1: फिलहाल उन्होंने फ़ोन नहीं किया, अल्लाह खैर ही करे, आज पता नहीं क्या वो जब उन्होंने फ़ोन नहीं किया, वैसे फ़ोन करते रहते हैं, शायद वो नेक्स्ट आवर में आ जाएं, हम उनके लिए भी दुआ करें। वैसे वो कह रहे थे पिछले प्रोग्राम में जो मेरा प्रोग्राम था और उसमें संडे के प्रोग्राम में, तो वो कह रहे थे कि बीमार हैं, जी जी संडे के प्रोग्राम में वो कह रहे थे बीमार हैं, तो उनकी दुआ करें, जी जी
9: होगा तो जरूर आएगा
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी
9: सज्जाद पहलवान भैया है,
1: इकबाल
9: भैया है
1: जी,
9: पापा शत भैया है, डॉक्टर मलिक साहब है, फिर हमारे मोहम्मद रफी भैया ने बहुत अच्छा गाना गाया
1: जी, बहुत खूबसूरत गीत गाए, वाह क्या कहने,
9: बर्थडे थी लास्ट वीक इसको, हैप्पी बर्थडे टू लेटेस्ट
1: जी, माशाल्लाह वाह जी, क्या कहने, वाह वाह।
9: चलो नहीं, हमारा कयूब साहब है, फिर हमारे सहेली में अतिका जी है
1: जी,
9: आशिया जी है, सलीना है
1: जी,
9: चिंपू जी है, रेखा जी, हमीदा जी, सितारा जी,
1: जी
9: ये लोग आते हैं मैं सबका नाम,
1: और स्पेशली जो हमारे भाई हैं जो मीठा जी हैं और चौधरी रुखसार भाई, बड़े प्यारे भाई हैं जी,
9: सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। जो भैया फर्स्ट भैया मोहम्मद
1: महबूब लाई साहब, महबूब जी
9: गाना गाया
1: जी,
9: हमने तमाम सलाम भेजा, थैंक यू भैया
1: जी,
9: ऐसा ही सबको मेरा सलाम, नमस्ते, ओके
1: वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
9: मैं बहुत पुराना गाना है
1: जी जी, कोई बात नहीं जी,
9: मेरा भी नन्ना सा मुन्ना जैसा गाना दो
1: कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नन्ना मुन्ना सा हो जाए कोई बात नहीं जी जी जी जी, ये जो है ना नन्ना मुन्ना से बड़ा मशहूर हो गया, पूरे दुनिया में छा गया वाह जी जी,

किया, पाई मैंने सजा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं।

आग में तेरी किस्मत खुली, मेरी दुनिया जले, क्या करूं।

0: किया पाई मैंने सजा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मेरे ये दिल बता मेरे ये दिल बता। दूसरा छोटा गा लेती हूँ।
1: जी जी जी ब्यूटीफुल, क्या गीत आपने गुनगुनाया, वाह क्या कहने।
0: तो

0: दिया तोड़ दिया दिल मेरा। थैंक यू भैया।
1: ब्यूटीफुल, क्या कहने जी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया, बड़ा अच्छा लगा और यू मेड माय इवनिंग टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हमें अच्छा लग रहा है कि आप आए और इतना खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाए और हमारी तरफ से और ये आपके लिए।
0: ये हमारा रेडियो है,
1: क्या क्या फरमाया जी गीत जी?
0: मैं बोलती हूँ
1: हाय हाय हाय, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
0: हाय
1: हाय हाय, क्या कहने क्या कहने, थैंक यू वेरी मच, यू मेड माई इवनिंग और यू नो व्हाट, ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। ये आपका प्यार है, हलूस मोहब्बत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आए और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा
0: है।
1: जी जी जी, वो आएंगे इंशाल्लाह, वो महफिल को लूटेंगे, हमारे नुखार भाई भी आ गए, वो भी लूटेंगे और आप आ चुकी हैं और अपनी अपनी हाजिरी लगा चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हमें अच्छा लग रहा है आप आएँ। और ये थे हमारे गिदन भाई और हमारे पापी जान सुमित्रा जी, ऑल द वे फ्रॉम मिल्टन कीनी। व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कपल हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरे में और उनको हम वेलकम कहेंगे, जिए कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार किया। और यहाँ पर मेरे भाई हमारे दिल जानी है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، چشمے روشن دلے ماشا با کمال لاجواب اوتا با عزت با وقار با ذوق با شوق ہر دل دی شخصیت بہت نفیس بہت لطیف بہت شفیق اور با عزت با رفت با عظمت میرے پیارے بھائی چیمپئن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا علی مدد
1: या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। और आप आए और बहार आ गई, यहाँ पे फूल खिल रहे हैं हमारे स्टूडियो में, हमें अच्छा लग रहा है। और जो आपका जो खूबसूरत नाम हमें आपने दिया है वो चैम्पियन और दुनिया में छा गया और क्या कहने, और सब मुझे चैम्पियन कहते हैं और हमने भी आपको एक नाम दिया हुआ है और मीठा भाई और मीठा जी वो पूरी दुनिया में छा गया। हमारी बहना ने मुझे फ़ोन किया, गज़ाला जबीर साहब ने, तो उन्होंने बातें कर रहे थे, कहती हैं कि यार आपने नाम दिया उनको, मैंने कहा नाम लेना था ना कि मैंने उनको नाम दिया है तो खुले आम बदान में नाम लेना था, तो कहती हैं कि हाँ जी ये हुआ वो हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं कि आपने तो ये तो देखा है ना, सुना तो है ना कि मैंने उनको नाम दिया है, बहुत खूबसूरत नाम है और दुनिया में माशाल्लाह। और जो भी मुझे फ़ोन करते हैं वो कहते हैं मीठा जी, और बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि आप मेरे भाई हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आएँ महफिल में आएँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, बिलीव करें। और बड़ा ही अच्छा लगता है जब भी आप इस प्रोग्राम में शिक्र करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, बहुत अच्छा।
2: अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जैसे माशाल्लाह मेरे लिए नहायत काबिले इज्जत और काबिले अज़मत है मोहतरमा आपा गज़ाली साहिबा, यकीन करें कि वो ऐसे ही है जैसे हमारी फैमिली मेंबर ही हैं।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह जी,
2: इतने काबिले इज्जत हैं और माशाल्लाह इतना प्यार देती हैं, माशाल्लाह यानी कि इतनी शफकत करती हैं हमें, यानी कि वो जैसे कहते हैं ना कि हमें अपने वालिदैन की कमी महसूस नहीं।
1: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने क्या, बड़ी बात, बड़ी बात है, बड़ी बात।
2: जैसे आप फरमाते हैं ना कि ये सारा एक परिवार है, इनमें जो जो नहीं ना आते के हर जैसे यानी के अदीबा आप भी हैं या और भी जो नहीं आती हैं, यानी के हैं वो भी हमारी माएं हमारी
1: माँ, जी जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, प्यार मोहब्बत है माशाल्लाह, क्या कहने।
2: और क्योंकि हम इनकी आवाज़ें तो नहीं सुनते लेकिन हम आपा गज़ाला जबीर साहब की तो हम बातें

Right, welcome back, listening. That was the hit of the hour. I've been enjoying it. Bohobo shukriya, sabka bhi. And thank you very much. I'm going to give you a little bit of information about Sunday Radio. And yes, Sunday Radio is on DAB Plus on Bradford, Keighley, Ilkley, Skipton, Leeds, Halifax, Manchester, East Lancashire, Blackburn, Burley, Darwin, Nelson, Kinton, Minton, Keene, or West London. Mein humara program suna ja raha hai. And you can also download the Sunday app on Apple Play and Google Play. And that is all about Sunday Radio. और इट गोइंग फॉरवर्ड ऑन अपवर्ड एज वेल. और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया सबका भी. और यहाँ पे मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने करना है कि बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी. और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक कर भी करनी है, और क्योंकि ब्रेक भी बहुत नज़दीक आ रही है, तो उससे पहले हमें टाइम चेक भी करना है.

0: ऑलराइट, और यहां भी हमने करना है टाइम चेक.
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक.
0: Right, I'm in the studio. Is 11 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with Parviz Khan. और जो भी मेरे बहन भाई साथी दोस्त अहबाब अजीज किसी की तारीफ करना चाहते हैं या किसी की हौसला अफजाई करना चाहते हैं, किसी की दाद देना चाहते हैं, तो आपने मुझे फ़ोन करेंगे और हवा के दोष में आके आपने जिसको भी आपने कहना है वो कह सकते हैं. एंड यू आर वेलकम टू डू शो एज वेल. और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी दोस्त मुझे जो है ना वो कह रहे हैं कि आपने फलाने को कहना है, फलाने को कहना, तो प्लीज आपने ऑन एयर आके और सबको एक दूजे के साथ जो भी आपने कोई पैगाम देना है तो आप दे सकते हैं हवा के दोष में. कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो 103.2 एफएम.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे. पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ.
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है. शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था.
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014. सोफी ज्वेलर्स.
4: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.
0: Sunrise and music. राइट, वेलकम बैक लिसनर. यू आर लिसनिंग टू सनराइज रेडियो 100.6 एफएम, 103.2 एफएम. क्योंकि मैं काफ़ी कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे दोस्त अहबाब अजीज़ हैं जो हमें ज्वाइन करते हैं, तो आई एम रिमाइंडिंग देम एज़ वेल, क्योंकि दे हैव अ लॉट ऑफ न्यू लिसनर्स, अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम बर्मिंघम, लंडन एंड वेस्ट लंडन एरिया, फ्रॉम वेस्ट यॉर्कशायर. सो आई एम ट्राइंग टू कीप अप विद देम एज़ वेल बिकॉज यू आर लिसनिंग टू सनराइज. और यहाँ पर हमारा साथ देने हमारे मोहतरम, हमारे दिल अजीज़ हैं और बहुत अच्छा लगा. रुखसार भाई हमारे मीठा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी हुजूर.
5: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: या अली मदद.
5: अल्लाह पीर मुहम्मद व सलाम मदद.
0: माशाल्लाह.
5: पहले तो क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया.
0: जी जी जी जी माशाल्लाह.
5: तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद जो शख्सियत आई हैं वो उनको मैं ज्यादा देर जो है
0: जी जी इंतजार कर रहा हूं. जी जी.
5: सभी का हक बनता है और सभी इतनी उल्फत, इतने प्यार, इतने मोहब्बत, इतनी चाहत के साथ माशाल्लाह इस महफिल में आते हैं, तो सभी का हिसाब बनता है.
0: जी जी बेशक बेशक.
5: तो क्योंकि ज्यादा तूल ना हो जाए तो इसलिए मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं सलाम अर्ज कर दूँ. तो ठीक है, जिनमें है मोहतरम आमिर शहजाद भाई है, सादे मोहतरम साहब, किबला शकील एम खान साहब हैं, चौधरी फरियाद साहब का पता चला कैसी तबीयत है उनकी?
0: आज उन्होंने फोन नहीं किया, अल्लाह खैर ही करे. पिछले जो संडे का प्रोग्राम था, मेरा प्रोग्राम था, तो उसने उन्होंने शुक्र की थी, तो उन्होंने यही बताया कि मैं बीमार हूँ और हमारे लिए दुआएं करें. तो हम ये उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह खैर ही करें. उसके बाद कोई मुलाकात हवा के दोष में कोई नहीं हुई है, तो हमें ये नहीं पता कि वो ठीक हैं या क्या वजह है कि वो नहीं आए हैं फिलहाल. जी
5: बहुत प्यारी शख्सियत है जी, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती वाली जिंदगी ता फरमाए. हम सभी उनके लिए खसूसी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत कामला और सेहत आदिला ता फरमाए. तो महबूब लाई साहब आए थे माशाल्लाह, बहुत प्यारा रहा.
0: अजीज
5: साहब हैं, वाजिद भाई हैं, वो भी बीमार, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी ता फरमाए. जंगीर साहब हैं, काशिफ भाई हैं, कामरान भाई हैं, चौधरी मुजफ्फर हैं, आपा गजाला जबी साहब है, अतीका आपी हैं, अदीबा आपी हैं, आपी शनाज मंजूर साहब है, हमेरा जी हैं, आपी नहीद हैं, और मोहतरमा सैम जी हैं, और हमेरा जी हैं, और जो हमारे टैक्सी ड्राइवर हैं, जो डिलीवरी ड्राइवर हैं, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो शॉपों में काम कर रहे हैं, जो हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे अजीज इस टाइम किचन में काम कर रहे हैं, सभी के लिए दुआ है और सभी को सलाम है. अल्लाह ताला सभी को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपकी पूरी टीम को मोहब्बतों भरा, चाहतों भरा, उल्फत भरा बहुत बहुत सलाम. और माशाल्लाह इतने प्यारे साहबान अकबर और दानिश और साहबान अरमान लोग हैं. मेरा वैसे मैं एक छोटा सा तालिब इल्म आता हूँ, तो ये चांद शायर हैं जो मैं आपके
0: और जी जी जी माशाल्लाह अरशाद अरशाद
5: मैं चाहता हूँ
0: जी
5: प्यार लिखता है कभी इससे कभी उससे मिला देते हो
0: वाह
5: यार अपना क्यों नजरों से गिरा देते हो
0: हाय हाय हाय हाय क्या कहने
5: थैंक यू सर बहुत शुक्रिया ये आपकी मोहब्बत और आपकी चाहत है
0: वाह
5: तुम ना तोड़ोगे दिल तेरा अब कभी भी
0: आहा
5: वादा करके फिर खुद ही बुला देते हो
0: हाय हाय हाय हाय क्या कहने
5: थैंक यू सर थैंक यू जलाते हो मोहब्बत की शमा मेरे दिल में
0: आहा
5: हवा देते हो कभी खुद ही बुझा देते हो
0: हाय हाय हाय वाह वाह वाह वाह
5: हंसाते हो अपनी बातों से लुभाते हो मेरा दिल
0: वाह
5: फिर ना जाने क्यों पल भर में रुला देते हो इल्म अदाब के सारे खजाने गुजर गए
0: वाह
5: क्या खूब थे वो लोग जो पुराने गुजर गए
0: पुराने गुजर गए हाय हाय हाय हाय वाह बहुत ही गहरा
5: बाकी है जमीन में फकत आदमी की भीड़
0: लेकिन
5: भाई
0: जी जी
5: बाकी है जमीन में फकत आदमी की भीड़
0: वाह
5: इंसान को मरे हुए तो जमाने
0: गुजर गए हाय हाय बहुत ही गहरा क्या कहने मेरे भाई का क्या कहने वाह वाह वाह वाह
5: चैंपियन भाई बहुत बहुत शुक्रिया
0: सर जी अब मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं सर क्यों शर्मिंदा करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए आपने कीमती वक्त मुझे दिया बहुत बहुत शुक्रिया सर आप आए और बाहर आ गई है कसम से क्या कहने अल्लाह हाफिज बहुत बहुत शुक्रिया सर रब रखा और ये आपके लिए यहाँ में मेरा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम भाई हैं और जितनी भी मैं इनकी तारीफ करूँ कम है यहाँ पर हमारे उस्ताद मोहतरम में और बहुत बहुत शुक्रिया और आप हमारे आफिस साहब हैं एम खान जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
6: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरी तरफ से आप
0: जी
6: आपके खवातीन हजरात साहब को सलामती रखे और आप आए
0: जी
6: आप आए हैं बाग में बाहर आ गई
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय क्या कहने मेरे भाई का जी
6: आपकी आने की वजह से उजड़ी आबादी में फिर हरियाली आ गई है
0: इसको दोबारा पेश करेंगे क्योंकि दोबारा करेंगे प्लीज बहुत शुक्रिया बहुत बहुत
6: मैंने कहा कि आपके आने से बाग में बाहर आ गई
0: जी
6: और फिर दोबारा उजड़ी हुई आबादी में रियाली आ गई
0: हाय हाय हाय हाय क्या कहने आप खुद अच्छे हैं माशाल्लाह क्या कहने बहुत खूब वाह
6: आप इरशाद फरमाए
0: जी
6: हम आप नहीं होते तो हम परेशान हो जाते
0: हाय हाय हाय हाय वाह जी उस्ताद जी क्या कहने वाह क्या कहने माशाल्लाह
6: आपको सलाम सब सुनने वालों को सलाम
0: आमीन आमीन आमीन
6: मोहब्बत करने वाली
0: जी जी
6: अल्लाह सबको सलामत रखे अल्लामा इकबाल इरशाद
0: जी जी बिस्मिल्लाह
6: आप इरशाद फरमाते इल्म है पैदा सवाल इश्क है पैना जवाब इश्क है मौजज़ात सल्तनत ओ फ़क़्र ओ दीन इश्क़े अदना गलाम साहिबो साहिबे ताजो नगी इश्क़ मकानो मकी इश्क़ जमानो जमी इसी को सरापा यकीन और यकीन फते बाब आगे मियां साहब का एक अपना मकान
0: जी जी बिस्मिल्लाह
6: मियां साहब ने बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा मियां साहब फरमाते हैं मां

सब खलक त्रदा राखा ओ हो भेत पुछाने सारे सब वडियाया उसनू लाए ते परवा हमेशा एक ना ताज साध तू देंदा एक ना बद अंदेशा ऐप मेरे पर पल्ला देंदा हुनर करेंदा जाए जदू करम

0: आदर बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप आए और बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है और जो कलाम सुना रहे हैं माशाल्लाह बड़े खूबसूरत, बड़े लाजवाब, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने मुझे कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वेलकम बैक लिसनर, और यहाँ में मेरा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ, और हमारे अपने हैं, हमारे मुर्शिद आ गए और छा गए, वाह जी वाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: माशाल्लाह, आपकी क्या तबीयत है?
2: जी अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है आपके
1: द्वारा। आपने पीछे रेडियो लगाया हुआ है?
2: जी
1: पीछे रेडी लगा, नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो गया, ठीक है, कोई मसला नहीं, थोड़ी पीछे से आवाज आ रही थी तो अभी ठीक हो गया। जी जी, और आप सुनाए कैसी तबीयत आपकी?
2: जी अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा, माशाल्लाह आए हैं और हम इंतजार में थे कि आप आएंगे और बड़ा ही खूबसूरत कुछ ना कुछ लेके आएंगे हमारे लिए, और कि आपके चाहने वाले वो इंतजार में थे, माशाल्लाह। जी
2: तो तमाम सुनने वाले,
1: जी जी,
2: तो हमारे रला बहन है, सतारा साहब है,
1: जी, जी,
2: सुमित्रा बहन है, किशन भाई है, डॉक्टर मलिक साहब है,
1: जी,
2: महबूब इलाही, वाजिद भाई है, चौधरी उकसार साहब है, आदर सेल अख्तर साहब है, शबरेज भाई है, अली भाई है,
1: राजन
2: साहब, सबको मेरे अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: थोड़ा है इसलिए
1: सर, आपके लिए टाइम ही टाइम है सर, क्यों शर्मिंदा करते हैं मुझे?
2: तो एक गजल लाया हूँ आपकी महफिल के लिए।
1: जी अर्शाद,
2: ये कलीम रावर लिखने,
1: कलीम रावर वाजिफ है, क्या कहने, वाह।
2: वो कहते हैं हर समत खुद नमाई का मंजर है आजकल।
1: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
2: हर समत खुद नमाई का मंजर है
1: आजकल,
2: राहजन भी अपने आप में राहबर है आजकल।
1: वाह वाह, क्या कहने,
2: झुलसा दिया है जिसे जमाने की धूप ने।
1: वाह,
2: झुलसा दिया है जिसे जमाने
1: में
2: ने, प्यासा है जिसका नाम समुंदर है आजकल।
1: हाय हाय हाय, वाह जी वाह, मकरर जी मकरर, बहुत खूब।
2: झुलसा दिया है जिसे जमाने की धूप ने,
1: वाह,
2: प्यासा है जिसका नाम समुंदर है आजकल।
1: वाह बहुत खूब।
2: हर शख्स चाहता है मेरे मर्तबा उसे।
1: वाह,
2: हर एक अंधी सोच का खूगर है आजकल।
1: वाह बहुत खूब बहुत खूब।
2: या दूसरों से खेलना यहाँ जिसका शियार है।
1: हाँ,
2: दूसरों से खेलना वहाँ जिसका शियार है।
1: वाह,
2: सबकी निगाह में वही बरतर है आजकल।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
2: या जरदार जितने शहर में थे उनको घर मिले।
1: हाँ,
2: जरदार जितने शहर में थे उनको घर मिले, घर उसको मिल न पाया जो बेघर है आजकल।
1: हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या कहने जी क्या कहने, मकरर जी मकरर, वाह।
2: जरदार जितने थे शहर में उनको घर मिले,
1: वाह,
2: घर उसको मिल न पाया जो बेघर है आजकल।
1: वाह जी वाह, क्या कहने, बहुत खूब, वाह।
2: जो शख्स अपने दौर का आईनादार था, अफसोस उसके हाथ में पत्थर है आजकल।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह।
2: आखिरी शेर कहते हैं,
1: जी जी अर्शाद,
2: लफ्जों में किस तरह इसे राहबर बयां करूं।
1: वाह,
2: इस दिल के आईने में जो मंजर है आजकल।
1: वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
2: तो एक और सुना देता मैं।
1: जी जी जी अर्शाद अर्शाद, क्यों नहीं जी जी।
2: खालिद महमूद जकी का नाम है।
1: जी जी,
2: वो कहते हैं तुझे पाकर भी जब कोई कमी महसूस होती है।
1: आहा,
2: तुझे पाकर भी जब कोई कमी महसूस
1: होती है
2: तो फिर ये सांस भी रुकती हुई महसूस होती है।
1: वाह क्या कहने क्या कहने,
2: जो कहना ही नहीं उसका इशारा क्यों दिया जाए।
1: आहा,
2: जो कहना ही नहीं उसका इशारा क्यों दिया जाए।
1: वाह,
2: ऐसी बात तो कुछ और ही महसूस
1: होती है। वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब।
2: पलट कर आ गए हो तुम तो क्यों आए नहीं लगते। तुम्हारी आंख में क्यों गर्द सी महसूस होती है।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
2: वगरना बोझ है जिसको लिए फिरता है कंधे पर, करे महसूस तो ये जिंदगी महसूस
3: होती है। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
2: शजर वो भी जिसे सींचा हुआ अपने खून दे देकर,
3: वाह।
2: शजर वो भी जिसे सींचा जो अपना खून दे देकर,
3: वाह।
2: कभी उसकी भी छाओ अजनबी महसूस होती है।
3: हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
2: ये मेरे ख्वाब हैं जो साया करते हैं मेरे सर पर,
3: वाह।
2: ये मेरे ख्वाब हैं जो साया करते हैं मेरे सर पर, मुझे तमाजते दोपहर में छाँव सी महसूस होती है।
3: बहुत खूब बहुत खूब।
2: किसी की गुफ्तगू के दरमियाँ अगर न जाने को,
3: वाह।
2: किसी की गुफ्तगू के दरमियाँ अक्सर न जाने क्यों, कहीं गहरी सी कोई खामोशी महसूस होती है।
3: हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, कमाल कर दिया।
2: आखिरी शेर कहते हैं,
3: जी जी अरशाद।
2: जमीन तेरी तरह भी,
3: वाह।
2: जमीन तेरी तरह मैं भी सफर में हूँ के जैसे,
3: वाह।
2: जमीन तेरी तरह मैं भी सफर में हूँ के जैसे, कभी ठहरी नहीं ठहरी हुई
3: महसूस। हाय हाय हाय, बहुत खूब बहुत ही खूब, वाह कमाल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और इतनी खूबसूरत शायरी की आपने, और आज भी महफिल आपने लूट ली है। बड़ा अच्छा लगता है जब भी आप शुक्र करते हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।
2: शुक्रिया,
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया।
4: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
5: गलियां गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
6: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
5: चाचा केड़ा चाचा?
6: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
5: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
6: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935
3: राइट वेलकम बैक एंड लिसनिंग योर सनराइज रेडियो और बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे अपने और हमारे दिल जानी आ गए हैं और दिल जानी को हम कहेंगे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
7: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
3: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी तबीयत है मेरे भाई?
7: हमारा भाई हमको इतना मान देता है कि दिल खुश हो जाता है।
3: आई दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल बाग हो गया। जब भी आप फिक्र करते हैं ना यहाँ पे फूल खिल रहे हैं स्टूडियो में, माशाल्लाह रौनकें हो रही है, माशाल्लाह खूबसूरती हो रही है।
7: मुझे बहुत कुछ सुनाना था लेकिन अचानक ही मेरा मूड जो है ना वो खराब हो गया।
3: अल्लाह खैर कर, ये क्या हुआ आपने वहाँ पे आके?
7: कोई बात ऐसी कोई बात नहीं, बस वो होता है ना कि
3: अच्छा
7: बार दफा जाहिल लोगों के साथ पाला पार जाता
3: हूँ। ओए अल्लाह रहम करे, ये क्या
7: थे वो गप्पे मारते हैं ये करते, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है।
3: अच्छा अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम।
7: चलो चलो ठीक है, हर एक आदमी की अपनी मर्जी।
3: कोई कोई बात नहीं, आप अपनी शायरी करें, कोई बात नहीं। चलो
7: सबसे पहले तो मैं सलामा अर्ज करूंगा जो इस वक्त बाजारों दुकानों फैक्ट्रियों कारखानों में टैक्सियों में कारों में होटलों में रेस्टोरेंटों में खेतों में खलियानों में
3: जी।
7: और जो इस पार उस पार जहाँ कहीं भी ये नशरियात सुनी जा रही हैं
3: जी,
7: मैं सबको सलाम करता हूँ
3: जी जी।
7: तो एक छोटी सी गजल, अब मैं मूड खराब हो गया मेरा।
3: कोई बात नहीं, शायरी करें, कोई बात कोई बात जी जी।
7: कोई एक गीत था, सब कुछ था मगर वो बस।
3: चलो कोई बात नहीं, करें आप अपनी शायरी करें, कोई बात नहीं जी।
7: अबीब जालब की, अबीब जालब की एक गजल है
3: जी जी।
7: इस शायर खराबी में गमे इश्क के मारे
3: आए हाय,
7: इस शायर खराबी में गमे इश्क के मारे जिंदा हैं यही बात बड़ी बात है प्यारे।
3: हाँ हाँ हाँ, क्या कहने।
7: इस शायर खराबी में गमे इश्क के मारे जिंदा हैं यही बात बड़ी बात है प्यारे।
3: वाह,
7: ये हंसता हुआ चांद ये पुरनूर सितारे, ये हंसता हुआ चांद ये पुरनूर सितारे, ता बिंदा पा बिंदा है जर्रों के सहारे, और शेर है हसरत है कोई गुंचा हमें प्यार से देखे,
1: वाह वाह वाह,
7: हसरत है कोई गुंचा हमें प्यार से देखे, अरमां है कोई फूल हमें दिल से पुकारे,
1: बहुत खूब,
7: हसरत है कोई गुंचा हमें प्यार से देखे, अरमां है कोई फूल हमें दिल से पुकारे, और हर सुबह मेरी सुबह पे रोती है रोती रही शबनम, हर सुबह मेरी सुबह पे रोती रही शबनम, हर रात मेरी रात पे हंसते रहे तारे, और ये हंसता हुआ चांद ये पुरनूर सितारे, तब बिंदा और पाबिंदा है जरू के सहारे, और आखिरी शेर है कुछ और भी हैं काम हमें ए गमे जाना, कब तक कोई उलझी हुई जुल्फों को संवारे,
1: कुछ
7: और भी हैं काम हमें ए गमे जाना, कब तक कोई उलझी हुई जुल्फों को संवारे। शुक्रिया जनाब,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। वाओ, ये थे हमारे मोहतरम अब्दुल कयूम साहब, और अब्दुल कयूम साहब आज वो किसी महफिल में थे और वो महफिल छोड़ के यहाँ पे हमारे साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। अब्दुल कयूम साहब ने कमाल ही कर दिया, और वो कह रहे थे कि मैं किसी महफिल में था और वहाँ पे मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ कि मैंने कुछ ना कुछ सुनाना था, तो बहुत अच्छा लगा अब्दुल कयूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारी बहुत ही प्यारी बहना है, और जितनी भी मैं इनकी तारीफ करूँ कम है, गजारा जबीन हमारा साथ दे रही, वेलकम जी आने खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी थी बीते मेरी बहना की?
8: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ, और उम्मीद करती हूँ सारे बहन भाई ठीक
1: सब माशाल्लाह सब ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास से A1 है माशाल्लाह, और आपकी आवाज़ सुन के और भी अच्छे हो गए माशाल्लाह।
8: आमीन आमीन। मैंने कहा ये मीठा जी इतनी मीठी बातें करते हैं, लगते हैं कि सारी मिल शुगर मिले इनकी।
1: नहीं नहीं नहीं, देखो ये मेरे भाई है ना, ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, और वो ही कहते हैं ना कि भाई का भाई अच्छा ही दोस्त होता है, अच्छी बातें करता है, अच्छी देखो कितनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, और मीठा है, और वैसे ही मीठा है, क्या ख्याल है?
8: मैं तो ये कहती हूँ कि शुगर मिल
1: यही
8: है,
1: शुगर मिल वही है, शुगर मिल वही है, और वो सुन रहे हैं माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम, और देखते हैं क्या होता है जी।
8: देखे बहुत गिले शिकवे कर लेंगे, जितने कर लेंगे कोई बात
1: नहीं, नहीं, नहीं वो वो वो वो कभी, वो ऐसा इंसान है वो कभी गिला शिकवा नहीं करता, बिलीव करें
8: आपको, पर कोई बात नहीं
1: जी, जी।
8: बहनें भाइयों को कहती होती है, भाई बहनों को कहते हैं,
1: नहीं नहीं नहीं, वो गिला शिकवा कभी नहीं करते, वो आपसे प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, जब भी वो प्रोग्राम में शिक्र करते हैं बड़ी प्यारी, और क्या कहते हैं कि वो सोच समझ के बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है वो, मैं उनको ऐसे जी
8: पता, मैंने पंजाबी शायरी कभी नहीं पढ़ी थी
1: जी,
8: मैंने इनकी वजह से पढ़नी शुरू की है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने रुखार भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने।
8: और मुझे कहते हैं कि ये लगती नहीं है, मैं जहाँ जिससे बोलती हूँ ना वैसा एक्सेंट बना लेती हूँ।
1: हाय हाय, ये देखो ना, ये आप ऑलराउंडर हैं और अच्छा लगता है जी।
8: हालांकि मैं वो सरगोदे वगैरह कभी नहीं गई, मैं पंजाबी अब सरगोदे की भी पढ़ लेती हूँ।
1: वाह जी वाह, देखो ये खूबसूरती आपके अंदर है ना, देखो ना
8: है? तो ये कहते हैं ना मैं पक्की लोरा ना देर बोलना,
1: देखो वो आपसे प्यार करते, देखो वो रुखसार भाई ना,
8: मैंने कहा आज मैं अपने मिठा जी के बताऊं मैं पक्की लोरा ना।
1: अच्छा जी,
8: की बोली बोलने वाले हैं
1: जी जी, माशाल्लाह वो दोबारा वो आएंगे इंशाल्लाह, और वो उन्होंने वो दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, वो हवा के दोष में आपकी तारीफ करेंगे, ठीक है ना? तो आप हमारे लिए क्या लेके आए आज, मुझे ये पहले बताएं।
8: मैं बताती, पहले तो मैं मिठा जी को निबड़ लू ना।
1: वो निबड़ना जी,
8: वो जो है अपना मेरे जो एक्सेंट हो जाते हैं ना, वो मैं जहाँ कहते हैं ना जैसा देश वैसा भी
1: वैसा, वाह जी वाह, क्या कहने वाह जी वाह।
8: इसलिए किसी को महसूस नहीं होते होने देती, माशाल्लाह इधर मेरे मीरपुर के भी इतने मिलने वाले हैं, मैं उन्हां नाल मीरपुरी बोली छोड़ी है।
1: मनप्रीत जो बहुत शुरू क्या कहने जी, अच्छा देखो ये होती है ना खूबसूरती होती है ना कि देखो जिस जहाँ पे भी जिस लोग जहाँ पे हैं मिरपुर के हैं या किसी और इलाके के हैं तो आप उनसे प्यार करती हैं और अच्छी गुफ्तगू करती हैं, ये आपका कमाल है, आप अच्छी हैं, खूबसूरती आपके अंदर है। और मीठा जी भी दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, उनको देखते हैं।
8: इस तरह बनी थी क्योंकि मेरे अबू DSP थे, हमारी ट्रांसफर होती थी, मैं वहाँ जाके वैसी बोली सीख लेती थी।
1: जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अच्छे माशाल्लाह, अच्छी बात है कि आपने सब जगह पे देखा है सुना है माशाल्लाह, और आपके साथ गुफ्तगू होती है तो
8: मैं अपने हिस्से का पढ़ लूँ ताकि पीछे वाले मुझे कुछ ना कहें।
1: माशाल्लाह जी, कि नहीं कोई कोई कह, यहाँ भी इस प्रोग्राम में कोई कुछ कहने वाला नहीं है, और ये आप सब अपनी फैमिली, हमारी फैमिली है, और बैठक होती है माशाल्लाह, और प्यार मोहब्बत की गुफ्तगू होती है हमेशा। जी
8: चले मैं एक थोड़ी सा पढ़ देती।
1: जी जी
8: अच्छा। हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था।
1: वाह क्या कहने,
8: हिजरत का इरादा हमारा भी नहीं था।
1: वाह,
8: पर इसके अलावा कोई चारा
1: नहीं था। वाह
8: थैंक यू भाई, पर इसके अलावा कोई चारा
1: नहीं था। वाह,
8: वो बोल भी मीठे नहीं थे हमको मयस्सर।
1: हाय वाह,
8: वो बोल भी मीठे नहीं थे हमको मयस्सर, यानी हमें तिनके का सहारा भी नहीं था।
1: हाय हाय हाय, बहुत खूब,
8: थैंक यू भाई।
1: क्या कहें,
8: इस वक्त के सदमे ने मुझे चाट लिया है। इस वक्त के सदमे ने मुझे चाट लिया है।
1: वाह,
8: जो वक्त अभी मैंने गुजारा भी नहीं था।
1: बहुत खूब,
8: क्या दिन थे, गम हो के खुशी, दोस्त हो या दुश्मन।
1: वाह,
8: क्या दिन थे के गम हो खुशी, दोस्त हो दुश्मन।
1: वाह,
8: जो तेरा नहीं था वो हमारा भी नहीं था।
1: इसको मुकर्र करें जी, बहुत खूब मुकर्र।
8: वाह
1: वाह वाह,
8: क्या दिन थे के गम हो के खुशी, दोस्त हो या दुश्मन।
1: वाह,
8: जो तेरा नहीं था वो हमारा भी
1: नहीं
8: था।
1: वाह क्या कहने,
8: इस शख्स ने जिंदा भी नहीं छोड़ा था मुझको। इस शख्स ने जिंदा भी नहीं छोड़ा था मुझको, हालांकि मुझे जान से।
1: वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब।
8: हालांकि इसने मुझे जान से मारा भी नहीं था।
1: वाह,
8: हिजरत का इरादा तो हमारा।
1: वाह वाह क्या कहने, बहुत खूब।
8: इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था।
1: वाह वाह,
8: थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया। और
8: हमको मेरा सलाम, शकील भाई का सुना ही नहीं मैंने, एक तो आप होल्ड ऐसा करवाते हैं किसी की आवाज।
1: ओए होए होए, ये क्या हो गया, ये उनको इतनी खूबसूरत शायरी उन्होंने की, बड़ी बेमिसाल कमाल की शायरी करते हैं। तो आपने
8: मुझे होल्ड पे लगाया हुआ था।
1: ओ हो, ये क्या हुआ, ये क्या,
8: आप ठीक करवाए, ये जो मैकेनिकल गया ना, ये फॉल्ट
1: टेक्निकल, इंशाल्लाह बहुत जल्द कुछ ना कुछ होने वाला है, आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे। और बड़े ही क्या कहते हैं कि मैं क्या कहूंगा आपके बारे में यहाँ पे, और बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला, डोंट वरी, आप वरी ना करें। और आपकी वजह से हमारे भाई जो है ना वो आ चुके हैं, भाई रुखसार दोबारा आ चुके हैं, तो उनसे वो आ चुके हैं।
8: अब मैं गिले शिकवे सुनने
1: वो गिले शिकवे नहीं सुनने, आपने रेडियो सुनना है।
8: मैंने सही बात है, मैंने जिंदगी में कभी पंजाबी
1: नहीं नहीं नहीं, वो प्यार, वो देखो देखो उनकी वजह से आप शायरी करती हो पंजाबी में या उर्दू में या जिस लैंग्वेज में करते थे, उनकी वजह से करते। देखो ये ओजला होता है, ओजला अफजाई करते हैं ना, देखो
8: ये कहते थे ना मुझे कि पंजाबी मुझे पढ़नी भी नहीं आती, और फिर मैं अब ऐसी पढ़ती हूँ कि मैं
1: हाय हाय हाय हाय
8: बोलती हूँ।
1: क्या कहने, ये देख खूबसूरती है ना, देखो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वाह जी वाह, ये तो कमाल हो गया। ये थे हमारी प्यारी बहना गजाला जमीन साहिबा, और गजाला जमीन साहिबा आप रेडियो सुनेंगी तो आपको जो आवाज़ आएगी यहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी आपको। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद किया है, और बहना, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने हमारा साथ दे रही हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पर मैंने क्या करना है कि यहाँ पर मैंने बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और जो सुनने वाले हैं जो विदहेल नंबर मुझे फ़ोन कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर मैंने टाइम चेक करना है, विच इज़ वेरी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एंड आई हैव टू डू द टाइम चेक एज वेल यहाँ पे। लिसनर रेडियो 103.2 एफएम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपने भी हमारा साथ दे रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ पे
9: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
1: Time in the studio is 42 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी नन्नी मुन्नी की निकली ब्रेक होगी. ब्रेक के फौरन बाद आपके साथ हमारे मिठा जी दोबारा आ गए हैं और सिमी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आपने हमारा साथ देने बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी बातें होगी इंशा जल और शुक्रान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी एफ रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी
9: Music. Looking for a quality home to rent?
4: Whether you need a one, two or three bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
9: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
10: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू सुंदर रेडियो और यहाँ में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे भाई और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और हमें अच्छा लग रहा है हमारे भाई इन्होंने मुझे दोबारा फ़ोन कर रहे हैं और भाई चौधरी अखार जी हैं हमारा साथ दे रहे हैं और हमारा मीठा जी हैं बहुत बहुत शुक्रिया मीठा जी, वेलकम कहेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: जी बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो मैं क्या बयान करूँ, हमारी आपकी आई है, यकीन करो कि आपकी गजाला के आने से जैसे कहते हैं ना कि वो कहते हैं बाहर आ गई है, तो उनकी इतने अच्छे बाद मैंने आवाज सुनी है, यकीन करें कि वतन दिल गार्डन।
0: नहीं नहीं, वो माशाल्लाह वो आएंगी रेगुलर प्रोग्राम में शिरकत, क्योंकि आपको पता है कि वो आपने इतना माशाल्लाह उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो वो तो वेनेसडे के भी आएंगे, संडे भी आएंगे इंशाल्लाह, तो बड़ा अच्छा लगा जी।
1: मैं चैंपियन भाई, मैं छोटा सा बंदा उनकी क्या तारीफ कर सकता हूँ या उनकी हौसला अफजाई मैं क्या कर सकता हूँ, यकीन करें कि तो मैं तो उनके कहते हैं ना उनके मुकाबले में मैं तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं हूँ। यकीन
0: नहीं नहीं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं मेरे भाई।
1: नहीं नहीं, देखिए जिस खूबसूरत अंदाज से वो आती हैं और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत पोएट्री पढ़ती हैं और माशाल्लाह, वैसे एक तशनी की रह गई कि उन्होंने पंजाबी में कुछ बोला नहीं है
0: पंजाबी ने कुछ बोला नहीं तो वो अभी इंशाल्लाह वो तैयारी करेंगे इंशाल्लाह जो आने वाला प्रोग्राम होगा और उसमें जो है ना वो संडे के रोज होगा ना, तो पंजाबी वो कह वो खुद उन्होंने फरमाया कि मैं कोई भी लैंग्वेज हो कोई भी बोली हो मैं बोल सकती हूँ, वो वाकई बोल सकती है, उसमें कोई शक नहीं है।
1: कोई शक नहीं, जैसे हम कहते हैं ना कि बंदा एक होता है ना ऑलराउंडर, एक होता है हर फन मौला, माशाल्लाह आप ही को अल्लाह ताला ने वो खसूसियात दी हुई है कि माशाल्लाह वो हर लैंग्वेज और बहुत आला और मखसूस अंदाज में बोल सकती है, जजमेंट नहीं कर सकता कि जैसे वो कह रही थी ना सरगोधे की बोली या मंडी की बोली या गुजरात की या लाहौर की या कराची की जो भी हो, माशाल्लाह वो बहुत खूबसूरत अंदाज में बोलती है,
0: इसमें कोई शक नहीं। ये आपका प्यार है और आपने उनको दावत दी, आपने रिक्वेस्ट की है कि वो पंजाबी में शायरी करें और आओ वो देखो उन्होंने सुना है तो वो पंजाबी में शायरी कर रही हैं, तो ये एक खूबसूरती, ये आपका कमाल है, सारा कमाल जो है ना जो सारा जो है ना वो आपके सर पे जाता है,
1: अल्लाह ताला उनके लिए है। ठीक है, थोड़ा सा एक बाकी हर गल पूछ बेली खुश होके,
0: हाय हाय
1: बाकी हर गल पूछ बेली खुश
0: होके,
1: एक उजड़न दे हालात ना पूछ,
0: वाह
1: किवें कोई आया किवें छोड़ गया,
0: वाह वाह
1: किवें होई आखरी मुलाकात ना पूछ,
0: वाह वाह
1: मेरी आज भी ते जज्बात ना पूछ, उदी तलखी दे कलमात ना पूछ,
0: वाह वाह वाह वाह
1: तू शाकर आप सियाणा है सदा चेड़ा पड़ हालात ना पूछ,
0: वाह
1: मैंने
0: कमाल कर दी मेरे भाई, कमाल कमाल कर दिया। और उन्होंने कहा कि आप जो शुगर मिल जो ना वो आपकी है मैंने आपको नाम दिया ना मीठा जी, तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने कहा कि शुगर मिल जो ना वो सारी आपकी है, तो मैं फिर वहाँ पे मैं चुप हो गया, मैंने कहा कि यार शुगर मिल के बारे में वैसे भी चर्चे पड़े हुए रोले पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ भी खामोश हो जाता हूँ, ये ना हो कि और कोई
1: अल्लाह ताला मेरी आपी को दिन दुगनी रात दुगनी फरमाए, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती वाली जिंदगी, अल्लाह ताला उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों की जिंदगी ता फरमाए,
0: माशाल्लाह आमीन,
1: उनकी नस्ल क्यामत तक आबाद और शाद रहे हैं, और इसी तरह मेरी आपी हंसी मुस्कुराती रहे। तो जड़ी बात है ना मीठा जी की, मीठा जी की यकीन करें कि वो कहते हैं कि मीठा हर बंदे को, वो कहते हैं ना कि डॉक्टर अक्सर कहते हैं
0: आजम नहीं होता है, वो कहते हैं ना वो
1: आपने आपने मीठा नहीं खाना, क्योंकि लोग डायबिटीज के
0: डायबिटीज की, और ये ना हो कि वो पॉकेट शुगर का ऊपर से नीचे कर दे, वो नीचे से ऊपर कर दे, तो वो चीज
1: अच्छा वो लोग जो ना जिनको मना होता है ना वो चाय तो फीकी पीते हैं लेकिन मिठाई सदका सबके खा जाते हैं,
0: वाह हाँ लड्डू वगैरह वो हर चीज जलेबी वगैरह हर चीज वो खाते हैं, वो बस कहते हैं वो या डायबिटिक ना हो जाए, ये ना हो जाए कि हमें शुगर हो जाए और डायबिटिक ना हो जाए,
1: ये तबरक समझ के खाते हैं ये मिठाई,
0: ये वो भी बात है ना मेरे भाई, देखो कि लड्डू कौन छोड़ता है यार लड्डू, आजकल के जो लड्डू जो ना वो जो मैंने क्या बात है आजकल के लड्डू जो ना वो सदके जावा, और सर जी आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हुई है, बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही म्यारी प्रोग्राम हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत है लाजवाब, और आपकी जो गुफ्तगू है ना ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे सीढ़ी में बैठा हूँ, आप मेरे आमने सामने बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे फूल खिल रहे हैं, खुशबू आ रही है,
1: यकीन करें चैंपियन भाई ये मेरे जिनके जो आप मेरे लिए इतने अल्फाज इतने को मैं इस काबिल नहीं हूँ, यकीन करें ये आपकी मोहब्बत और आपकी चाहत है जो मेरे जैसे नाचीर को मेरे जैसे अदना बंदे को जो है हकीर को इस काबिल समझते हैं,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह ये आपका प्यार है, और ये हम दुआ करते हैं कि किसी की नजर ना लग जाए, ये देखो दुनिया में क्या रखा है मेरे भाई, क्या रखा है दुनिया में, सब ने जो आया है दुनिया में उसने जाना ही जाना है, यही ये जो देखो ये देखो ये जो खूबसूरती है और यही वो प्यार हम ले रहे हैं बांट रहे हैं, और उसके अलावा हमने क्या करना है मेरे भाई, क्या कौन सी हमने ज़मीन लिखानी है या ज़मीन देनी है। और वही बात है, ये काश काश ऐसे दुनिया में आप जैसे दुनिया में हो जाए ना, तो ये दुनिया खूबसूरत हो जाए, और वाकई दुनिया खूबसूरत है आप जैसे लोगों की वजह से, आप दोस्तों की वजह से, आप हमारे भाई हैं दोस्त हैं, और वाकई ज़िंदगी खूबसूरत है।
1: अभी जो सभी आए ना प्रोग्राम से माशाल्लाह, वो यकीन करें कि वो सब ही मुझसे हर लिहाज से, इलम के लिहाज से, अदब के लिहाज से और बातचीत के लिहाज से मुझसे बहुत आला अरफा है, यकीन करें।
0: माशाल्लाह, नहीं नहीं नहीं, आपकी प्यार है, हर बंदा जो है ना, जैसे मैं बात करता हूँ कि हर बंदे की अपनी खूबसूरती, अल्लाह ताला ने देखो हर बंदे को कुछ ना कुछ दिया है, ये ना कहें कि यार मुझे नहीं दिया, उसको दिया, उसको क्यों ज़्यादा दिया, मुझे कम दिया, नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। और वो आईने में देख लें और सुन लें, और आपकी जो भी अल्लाह ताला ने वो दिया है ना, उसका शुक्र अदा करें कि हम बेशुक्र होकर शुक्र अदा नहीं करते, ये बड़ी मसल है। हम देखते हैं कि हम जो अपने प्लेट में नहीं देखते कि हमारे प्लेट में क्या है, हम देखेंगे दूसरे के प्लेट में क्या है।
1: सुबहान अल्लाह, क्या कहें, बहुत खूबसूरत बात की है आपने, यकीन करें वो जैसे कहते हैं ना कि आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया।
0: माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसी से बात कर रहा था तो देखो कि दुनिया में देखो कि खुशी गमी होती है, तो वो कहने कि यार हमारे पास टाइम ही नहीं है किसी के घर में जाने को। मैं हैरान हो गया यार, मैं हैरान हो गया, मैं कहते हैं कि यार हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारा जो काम करें या किसी के घर में जाएं, मैं वहाँ पे हैरान हो गया, क्योंकि यार देखो कि यार पैसा तो देखो अल्लाह ताला को वो जो हक में आपके हक में ना वो देगा अल्लाह ताला,
1: जैसे जो भी जो आपके नसीब में वो आपको मिलेगा, सही बात है, आपको जो आपके नसीब में नहीं ना वो आपके पास आकर भी चला जाएगा।
0: हाँ वही बात है, देखो कि हर बंदा जो ना देखो वो सुबह जागता है तो वो दौड़ दौड़ करता है, दौड़ दौड़ करता है कि यार ना वो किसी खुशी के जाना या किसी गम में जाना, ना किसी के दोस्तों के पास जाना, ना किसी को फोन करना, ना किसी के बारे में सोचना, तो वो क्या जिंदगी है मेरे भाई। मैं ये सोच रहा हूँ वो जिंदगी क्या जिंदगी है,
1: वही तो कहते हैं जो जैसे एक मरहले मैं सुन रहा था किसी का, तो वो आलम कह रहे थे कि इंसान और जानवर की जिंदगी में यही है, खाता जानवर भी है खाता इंसान भी है। तो जानवर की जिंदगी में यही फर्क है कि इंसान को पता होता है कि अच्छी जगह कौन सी है, बुरी जगह कौन सी है, अच्छा खाना कौन सा है, बुरा खाना कौन सा है, यही जिंदगी इंसान और जानवर की जिंदगी में यही फर्क है,
0: यही फर्क है, यही फर्क है। वही वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है जी, जबरदस्त आपने कमाल कर दी, इसको आपने रैप अप किया बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा लगा मेरे भाई, इसीलिए मैं आपको उस्ताद मानता हूँ और इसीलिए मैं मानता हूँ मेरे भाई,
1: छोटा सा
0: जो इंशाल्लाह वो जल में एक आपको एक जो अभी वो टाइम नहीं है, इंशाल्लाह जो आने वाला प्रोग्राम होगा उसमें मैं एक मैंने आपको सवाल पूछना है, वो मैंने हवा के दोष में पूछूंगा, और सबका फर्दन फर्दन जो मौकफ होगा मैं पूछूंगा उनका क्या राय क्या है। और एक सवाल है मेरे जहन में अभी भी आया, वो अभी टाइम नहीं है, तो आने वाले प्रोग्राम में वो मैं इंशाल्लाह जल मुझे याद रही तो मैं आपसे पूछूं, क्योंकि जो आप जैसे जो पढ़े लिखे इंसान हैं तो माशाल्लाह वो आप बात करेंगे उसके बारे में या उसके बारे में कोई राय देंगे या कोई गुफ्तगु करेंगे।
1: सर ये नहीं, सर ये आपकी मोहब्बत है, यकीन करके जो माशाल्लाह जो आलम है, जो फाजिल है, जो साहिबान
0: मेरे भाई, मैं ये कह मैं आने कह रहा हूँ, मैं
1: मोहतरम शकील साहब हैं, एम खान साहब हैं, आपकी गजाला जी भी है, अतीका आप भी हैं, सभी जो महबूब भाई हैं, सभी जो है ना,
0: नहीं नहीं हम मैं
1: बताते आप खुद माशाल्लाह इतने माशाल्लाह इतने
0: पढ़े, नहीं नहीं ये जो जो सवाल होगा ना, ये सवाल सबके लिए, हर बंदे की अपनी अपनी राय होगी और उसमें हम पूछेंगे, हर बंदे से पूछेंगे अपनी अपनी राय, क्योंकि जो कहते हैं ना कि जो एक से ज्यादा होगा ना तो उनका अपना एक खूबसूरती होती है, और देखते हैं कि वो उनका क्या जहन क्या कहता है।
1: मेरे जैसा काम इलम बंदा क्या आपको बताएं?
0: नहीं मेरे भाई, मेरे भाई अभी अभी अभी अभी ओके अल्लाह हाफिज, अभी मैं ये बात नहीं करूंगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक हमेशा वो खुश रखे मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हमारे मौजूद मेहमान है, हमारे मोहतरम शबरेज भाई हैं, शबरेज भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम सलाम भाई, क्या
0: हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अपनी सुनाई से ठीक है आपकी?
2: अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, आपकी दुआएं
0: माशाल्लाह, हमारी दुआ हमेशा आपके साथ है, और
2: शुरू से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा,
2: मैंने मिलाई है तो मैंने कहा चलो अभी मिल गई है सबको जो है सलाम
0: जी,
2: शकील भाई हमारे पढ़ने वाले
0: जी
2: और जितने भी हमारे जो ब्रदर और सिस्टर जितने भी सुनने वाले हैं उनको स्पेशल मेरा सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपने सुनाया, आपके दोस्त बाब अजीज सब ठीक है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ है, सब ठीक ठाक है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी दुआ हमेशा आपके साथ है मेरे भाई। और जो कहते हैं ना कि वो फ्री टाइम हो ना तो मेरे लिए भी दुआ करनी है आपने।
2: तो भाई मेरा टाइम ही सब आपके लिए है।
0: अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का।
2: माशाल्लाह
0: जी,
2: हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, आप हमारे साथ भी हैं।
0: नहीं नहीं मेरे भाई, हमने आपसे सीखते हैं माशाल्लाह, जो आपके दोस्त बाब अजीज़ हैं उनसे सीखता हूँ माशाल्लाह। और यही वो काम है, और दुनिया में जो आए हैं उन्होंने सीखना है, सीखना है और चले जाना है, और यही वह बात हो रही है। कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, एक दूजे के साथ सीखते हैं, और यही वो प्यार मोहब्बत खलूस है। आप जैसे भाई माशाल्लाह, वो देखो टाइम निकाल के फ़ोन करते हैं, उजरा अफजाई करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है।
2: भाई आप आते हैं हमारे लिए, हमारा फ़र्ज़ है कि आपको देना फ़ोन।
0: माशाल्लाह बड़ी बात है जी, देखो ये बड़ी बात है। देखो
2: आप, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सब प्रेजेंटर का
0: जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, जी, जी,
2: की टीम का जो है ना,
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर,
2: शुक्रिया अदा करता हूँ
0: जी। जी बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया हो गया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए।
2: बहुत भाई
0: अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए, और मेरे भाई को भी सलाम पेश करना है, और आप जो मेरा लाडला है ना, और उसको सलाम पेश करना है, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। राइट, थैंक यू वेरी मच, सब दोस्तों का शुक्र गुजार हूँ, ममनून हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। ऑल द ब्यूटीफुल कॉल्स केम ऑन एयरवेव्स, जिन्होंने मुझे बिजी रखा बिटवीन आवर्स 8 and 9, 9 and 10, 10 and 11, काफ़ी कॉल जो मिस हो चुकी हैं, मैं उनसे मज़ा चाह रहा हूँ। आई डू अपोलोजाइज़ टू देम एज़ वेल, और बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले आई एम गोना गिव यू लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट सुंदर रेडियो, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी है और ये भी बहुत ज़रूरी है। यू आर लिसनिंग टू सुंदर रेडियो 100.6 FM, 103.2 FM क्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर, और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड सुंदर रेडियो अप ऑन एप्पल स्टोर, ऑन गूगल प्ले स्टोर, ऑन, ये भी बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, और www.sunriseradio.fm, और ये भी एक खूबसूरती है आप दोस्तों के लिए, ठीक है? और ये भी हो गया माशाल्लाह। और यहाँ पे इफ़ यू यहाँ पे आपको पता है कि बहुत खूबसूरत बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे सुन रहे रेडियो में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और हमारे भाई आ चुके हैं, और भाई अभी टाइम ख़त्म होने वाला है मेरे भाई। और सलाम माशाल्लाह। नहीं नहीं, आपको एक मिनट, दो मिनट में, एक मिनट है आपके पास, आपको सलाम पेश करना, सबको सलाम पेश करते
3: जी। मेरी तरफ से सबको सलाम, अतीका जी को सबको सलाम, मतलब के जो रुखसार भाई थे ना।
0: हाँ रुखसार भाई जी, जी जी
3: जी जी, अपने अपने अपने थे
0: जी,
3: महबूब अली साहब, सबको सलाम मेरी तरफ से
0: जी।
3: और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा
0: है। हाय हाय हाय, सदके जाओ, ये मेरा भाई, देखो ये मेरा भाई है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो ना संडे के प्रोग्राम में गैर हाजिरी नहीं करनी है, ठीक है?
3: इंशाल्लाह
0: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई के, आप आए और बाहर आ गए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा, अल्लाह हाफिज। Right, that was a beautiful call, mashallah. और यहाँ पे मैंने ending करनी है, क्योंकि अभी time बहुत ही कम, program का ख़त्म होने का

कोई शिकवा ना करेंगे, ना आजमाएंगे। तुम जहां पाव रखोगे ये दिल बिछाएंगे। हम तुम्हारी वफा की दुनिया में